0: तस्मै शिखराय नमः शिवाय। ॐ मनरिति भस्म जलमिति भस्म है मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धुरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। आगे शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज्य सूर्याय दक्षा धुरनाशकाय। कंठ में भी कर दो गले में हिया शिवाय गौरी बदनाब्ज ब्रिज सूर्याय मेष धुरनाशकाय। हरिः ओम पिनाकहस्ताय सूर्याय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय। ओम यक्षस्वरूपाय जटाधरकाय पिनाकहस्ताय सनातनाय। ओम दिवाय देवाय दिगंबराय तस्मै हकराय नमः शिवाय। ओम जलमिति भस्म अग्निरिति भस्म हरि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थम गतो विवा अदसाय यस्मृत पुनरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यंतरः शुचिः। यस्मृत पुनरीकाक्षम स्वबाह्याभ्यंतरः शुचिः। ज्यादा हो गए Put some way at this. That's all right. What's up?
1: Take knife away. After private. Hey boy, come here.
0: तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय विद्महे तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम भस्मांगराय नीलकंठाय महेश्वराय सदाशिवाय। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय गुड गुड पिनाकहस्ताय जटाधराय गुड। ओम मंदार पुष्प बहु पुष्प सुविजिताय ए प्राण प्रतिष्ठन्तु असे प्राण क्षरन्तु च असे देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चनः। हरिः ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम जल स्नानम करिष्यामि श्रीगं गणाधिपतये नमः। हरि ओम लिंगास्थानम करिष्यामि। ओम श्री नारायण गंगे जैमिने जैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिक्रियताम्। हरि ओम तीन बार अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राण क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाय माम हेतु च कश्चन इति जलस्नानम करिष्यामि इति जलस्नानम करिष्यामि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।

नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं पावन यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम इति पञ्चामृतमयानितं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शर्करया स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ओम। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। हरिः ओम। कामधेनु समुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परं पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां पावन यज्ञ हेतुश्च पयस्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओम सदा शिवाय नमः। साम सदा शिवाय नमः। एवरी टाइम कीप चैंटिंग ओम नमः शिवाय व्हाइल यू डूइंग वॉशिंग। हरिम सदा शिवाय नमो नमः। साम सदा शिवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम तरु पुष्प रेतु समुद्भूतं सुस्वादं मधुरं मधु तेज पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। इदं मधु स्नानं करिष्यामि शिवलिंगाय नमो नमः। हरिः ओम। ओम पयस्वस्तु समुद्भूतं मधुराम्ल शशिप्रभं दद्यानीतमयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओदो सदा शिवाय नमः। ओम सदा शिवाय नमः। साम्ब सदा शिवाय नमः। हरि ओम। पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। हरिः ओम। पञ्चामृतमयानीतं पयोदधिकृतं मधु शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। ओम हर हर महादेव। नाउ वाटर। ओम गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। काशी भागीरथी सर्वतीर्थाथी जलं सन्निध्यौ कुरु। ओम श्रीनारायण नमः। श्री पशुपते नमः। श्री गंगाधराय नमः। जटाधराय नमः। ओम अष्टांगलिंगाय नमः। ओम सदाशिवाय नमो नमः। ओम लिंगाष्टकाय नमो नमः। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। पानी और हो गए। अब तिलक तिलक करना है। भस्म का अच्छे से तिलक करके। हरिः ओम। चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं भावनासनम् आपदं हरति नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। ओम सदा शिवाय नमः। साम

0: शंकर भगवान
1: की जय। अगरबत्ती वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। One leaf here and water. वनस्पति रसद भूतो गंधाढ्यं गंधयुक्तं आग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। Some water. हरि ओम कर्पूर गौरव कर
0: वाटर
1: ओम ज्योतिर ज्योतिर अग्निर ज्योति स्वाहा ओम ज्योतिर सूर्य वर्चर सूर्य स्वाहा ओम अग्निर ज्योतिर वर्चर ज्योति स्वाहा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्घिमन गुरुवे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिः ओम ओम श्री परमेश्वराय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम श्री सदा शिवाय नमः।
0: Don't step here, please. Don't step here. Hey, go back out. Thank you.

0: Board worker. Getting it.
1: ओम प्राच्यै नमः सिंदूर भी डालिए ओम पश्चिमाय नमः ओम उत्तराय नमः उत्तर दिशे नमः ओम दक्षिणाय नमः ओम ईशानाय नमः ओम आग्नेय नमः ओम वायव्ये नमः ओम नैऋत्यै नमः सानाय नमः ओम भूतलाय नमः नीचे ओम आकाशाय नमः आकाश में बस अब फूल रख देंगे चारों दिशा में नाउ फ्लावर देन वी नीड टू हैव फ्लावर
0: आप ब्रिंग इन नाइन कलर्स फ्लावर्स फ्रॉम आवर गार्डन
1: एंड दैट इज ऑलरेडी हरि ओम ओम सूर्याय नमः ओम सोम सेता वाइट ओम चंद्राय नमः ओम भौमाय लाल रेड ओम भौमाय नमः भौमरेण ऑलराइट भौमाय नमः नाउ ग्रीन बुम बुदाय नमः ओम बुम बुदाय नमः ओ येलो ओ ब्रिम बृहस्पतये नमः नो व्हाइट डायमंड कलर ओम राम ब्रिम रौ शुक्राय नमः नो ब्लैक सनी कलर ओम शमशनेश्वराय नमः शमशनेश्वराय नमः नाउ ब्लू ओ ये या ओम राम राहवे नमः ब्राउन Oh, maybe the one like pinky style. Yeah. Yeah, you got it? Okay. Yeah.
0: Where is the vokai? Where is the
1: Basma?
0: Basma.
1: There is a small category. Where is that Basma? Bas. Om Kim Kedave Namaha. Bas. Bas. अब अग्नि को प्रज्वलित करके एक लकड़ी में रख के छोड़ देंगे उसमें ओम चंद्रमा मनसो जात दक्षुर सूर्य अजायत श्रोता अद्वायु ब्राणस मघ्रदग्नि अजायत ओम अग्नि सानिल्य गोत्र ओम अग्नि सानिल्य गोत्र मेष ध्वज प्रामुखे मम सम्मुखो भवः हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात तक्षुर सूर्य अजायत श्रोता द्वायु प्राणस मुखारदग्नि अजायत बोले अग्निदेवता की जय नाउ वी कैन सेट थ्री लकड़ी विथ घी थ्री स्टिक्स थ्री ओनली फर्स्ट थ्री
0: All these three ones?
1: No. Different, separate. Yeah, okay.

0: ओम धनंतरवे स्वाहा। नाउ वेरी दैट लॉन्ग स्टिक फॉर द घी वो। हाँ ये घी के लिए। ओम प्रजापते स्वाहा। पुट इन योर चेस्ट एंड व्हेन ही सेज स्वाहा। ओके, जिसको जिसको भस्म लगाना बचा है उनको भी लगा दीजिए। ओ जो पीछे आए।
1: रतन देवी और सूरज देवी, दोज हु जस्ट केम नाउ पुट देम टिल द गॉड्स फ्रॉम दिस हियर एंड वेयर इज दिस थाली।

0: ओम इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, सर्वार्थ देवा सर्वतीर्थादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा सोधा नमस्तुते स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्यः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता स्वाहा, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा, ओम ब्रह्मपुत्रिये विद्महे सरस्वतीये धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदया स्वाहा, ओम महालक्ष्मीये विद्महे विष्णुपत्नीये धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया स्वाहा, ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदया स्वाहा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंडकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा, दिवाकराय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदया स्वाहा, ओम दश दिक्पालाय नमः स्वाहा, नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम् नमः, नमः प्रकृते भद्राय देवता देवाय स्मता प्रतिष्ठाम स्वाहा, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशत्त शोक सुभद्रिकां काम्बिलवासिनीं स्वाहा, एहे ई ब्रह्मन्द महादेवाय नमः स्वाहा, हरि ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा, पशुपत्ये नमः स्वाहा, अघोराय नमः स्वाहा, साम्ब सदाशिवाय नमः स्वाहा, चारवेदाय नमः स्वाहा, ऋग्वेदाय नमः स्वाहा, सामवेदाय नमः स्वाहा, यजुर्वेदाय नमः स्वाहा, अथर्ववेदाय नमः स्वाहा, अठारपुराणाय नमः स्वाहा, सकल उपनिषदाय नमः स्वाहा, बद्रीनाथाय नमः स्वाहा, केदारनाथाय नमः स्वाहा, ठाकुरपुरे नमः स्वाहा, सोमनाथाय नमः स्वाहा, अमरनाथाय नमः स्वाहा, नाउ वी गोइंग थाउजेंड्स
1: थाउजेंड नेम्स ऑफ द
0: ओम स्थिराय नमः स्वाहा, ओम स्थाणवे नमः स्वाहा, ओम प्रभवे नमः स्वाहा, ओम भीमाय नमः स्वाहा, ओम वरदाय नमः स्वाहा, ओम प्रभवाय नमः स्वाहा, ओम प्रवराय नमः स्वाहा, ओम वरदाय नमः स्वाहा, ओम सर्वात्मने नमः स्वाहा, ओम सर्वविख्याताय नमः, ओम सर्वस्मै नमः स्वाहा, ओम सर्वकराय नमः स्वाहा, ओम भवाय नमः स्वाहा, ओम जटिने नमः स्वाहा, ओम चर्मिणे नमः स्वाहा, ओम शिखंडिने नमः स्वाहा, ओम सर्वांगनाय नमः स्वाहा, ओम सर्वभावनाय नमः स्वाहा, ओम हराय नमः, ओम हरिणाख्याय नमः स्वाहा, ओम सर्वभूतहराय नमः स्वाहा, ओम प्रभवे नमः स्वाहा, ओम प्रवित्याय नमः स्वाहा, ओम निवित्ताय नमः स्वाहा, ओम नियताय नमः स्वाहा, ओम शाश्वताय नमः स्वाहा, ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा, ओम श्मशानवासिने नमः स्वाहा, ओम भगवते नमः स्वाहा, ओम खजराय नमः स्वाहा, ओम गोचराय नमः स्वाहा, ओम अर्दनाय नमः स्वाहा, अभिवाद्याय नमः स्वाहा, महाकर्मणे नमः स्वाहा, तपस्विने नमः स्वाहा, भूतभावनाय नमः स्वाहा, उन्मत्त वेश प्रच्छन्नाय नमः स्वाहा, ओम सर्वलोक प्रजापतये नमः स्वाहा, ओम महारूपाय नमः स्वाहा, महाकायाय नमः स्वाहा, ओम वृषरूपाय नमः स्वाहा, महायसे नमः स्वाहा, महात्मने नमः स्वाहा, सर्वभूतात्मने नमः स्वाहा, विश्वरूपाय नमः स्वाहा, महाहणवे नमः स्वाहा, ओम लोकपालाय नमः स्वाहा, ओम अंतरहितमने नमः स्वाहा, ओम प्रसादाय, ओम हरिगर्भे नमः स्वाहा, ओम पवित्राय नमः स्वाहा, ओम महते नमः स्वाहा, ओम नियमाय नमः स्वाहा, नियमाश्रिताय नमः स्वाहा, ओम सर्वकर्मणे नमः स्वाहा, ओम स्वयंभूताय नमः स्वाहा, ओम आदये नमः स्वाहा, ओम आदिकराय नमः स्वाहा, ओम निधये नमः स्वाहा, ओम सहस्रथाय नमः स्वाहा, विशालाक्षाय नमः, ओम सोमाय नमः स्वाहा, ओम नक्षत्र साधकाय नमः स्वाहा, ओम चंद्राय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम शनये नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम ग्रहाय नमः स्वाहा, ओम ग्रहपतये नमः स्वाहा, ओम वराय नमः स्वाहा, ओम अत्रये नमः स्वाहा, अत्र नस्मकर्ते नमः स्वाहा, ओम मृगबाणपाण्याय नमः स्वाहा, ओम अगनाय नमः स्वाहा, ओम महातपसे नमः स्वाहा, ओम घोर तपसे नमः स्वाहा, ओम अदीनाय नमः स्वाहा, ओम दीन साधकाय नमः स्वाहा, सम्मत सरकाराय नमः स्वाहा, ओम मंत्राय नमः स्वाहा, ओम प्रमाणाय नमः स्वाहा, ओम परमात्म तपसे नमः स्वाहा, ओम योगिने नमः स्वाहा, ओम यज्ञाय नमः स्वाहा, महामीजाय नमः स्वाहा, महारेतसे नमः स्वाहा, ओम गणपतये नमः स्वाहा, दिग्वाससे नमः स्वाहा, ओम कामाय नमः स्वाहा, मंचवेद नमस्ते नमः स्वाहा, परमाय मंत्राय नमः स्वाहा, सर्वभावकराय नमः स्वाहा, ओम हराय नमः स्वाहा, ओम कमंडलुधराय नमः स्वाहा, ओम धनुन्ये नमः स्वाहा, ओम बाणहस्ताय नमः स्वाहा, ओम कपालवते नमः स्वाहा, ओम असनये नमः स्वाहा, शतघ्निने नमः स्वाहा, ओम खंगिने नमः स्वाहा, पट्टिसिने नमः स्वाहा, आयुधिने नमः स्वाहा, महते नमः स्वाहा, सुवस्ताय नमः स्वाहा, सुरूपाय नमः स्वाहा, ओम तेजसे नमः, ओम तेजकराय निधये नमः स्वाहा, उष्णीषिणे नमः स्वाहा, शुभक्राय नमः स्वाहा, उद्ग्राय नमः स्वाहा, ओम विनताय नमः स्वाहा, ओम दीर्घाय नमः स्वाहा, ओम ऋषिकेशाय नमः स्वाहा, ओम हरिकेशाय नमः स्वाहा, सुतीर्थाय नमः स्वाहा, ओम कृष्णाय नमः स्वाहा, श्रृंगालरूपाय नमः स्वाहा, ओम सिद्धार्थाय नमः, ओम मुन्नाय नमः, ओम सर्वशुभंकराय नमः स्वाहा, ओम अजाय नमः स्वाहा, ओम बहुरूपाय नमः स्वाहा, ओम गंधधारिणे नमः स्वाहा, ओम कर्पूरदिने नमः स्वाहा, ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा, ऊर्ध्वलिंगाय नमः स्वाहा, ऊर्ध्वसायिये नमः स्वाहा, नभस्थलाय नमः स्वाहा, त्रिजटिने नमः स्वाहा, चिरवाससे नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम सेनापतये नमः, ओम विभवे नमः, ओम अहस्राय नमः, ओम नक्तसुराय नमः स्वाहा, ओम तिन्मगये नमः स्वाहा, ओम सूचवर्षाय नमः स्वाहा शुभसरसाय नमः स्वाहा ओ गजग्ने नमः स्वाहा ओम पाणिने नमः स्वाहा ओम दैत्यग्ने नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम लोकदात्रे नमः स्वाहा ओम गुणकाराय नमः स्वाहा सिंहादूल रूपाय नमः स्वाहा आर्धसंभावरावृत्ताय नमः स्वाहा कालयोगिने नमः स्वाहा महानादाय नमः स्वाहा ओम सर्वकामाय नमः स्वाहा ओम चतुष्पदाय नमः स्वाहा ओम निशाचराय नमः स्वाहा ओम प्रेतचारिणे नमः स्वाहा ओम भूतचारिणे नमः स्वाहा ओम महेश्वराय नमः स्वाहा ओम बहुभूताय नमः स्वाहा ओम बहुधराय नमः स्वाहा ओ सोनार्वे नमः स्वाहा ओम अमिताय नमः स्वाहा ओम गतये नमः स्वाहा ओम नित्य प्रियाय नमः स्वाहा नित्य नर्तनाय नमः स्वाहा नर्तकाय नमः स्वाहा सर्वलालसाय नमः स्वाहा ओम घोराय नमः स्वाहा ओम महातपसे नमः स्वाहा ओम पासाय नमः स्वाहा ओम नित्याय नमः स्वाहा ओम गिरिरुहाय नमः स्वाहा ओम नवसे नमः स्वाहा ओम सहस्त्रताय नमः स्वाहा ओम विजयाय नमः स्वाहा ओम व्यवसाय नमः स्वाहा अंतरिद्याय नमः स्वाहा ओ अतिंद्राय नमः स्वाहा अघर्णनाय नमः स्वाहा ओम घर्षणात्मने नमः स्वाहा यगने नमः स्वाहा कामनाशकाय नमः स्वाहा दक्षगपाहाय नमः स्वाहा ओम सुसहाय नमः स्वाहा मध्यमाय नमः स्वाहा तेजपहारिणे नमः स्वाहा बलग्ने नमः स्वाहा मुदिताय नमः स्वाहा अर्थानाय नमः स्वाहा अजिताय नमः स्वाहा अवराय नमः स्वाहा गंभीरघोषय नमः स्वाहा गंभीराय नमः स्वाहा गंभीरबलहानाय नमः स्वाहा न्यग्नोरूपधराय नमः स्वाहा न्यग्रुधाराय नमः स्वाहा ओम वृक्षकर्णस्थिराय नमः स्वाहा ओम विभवे नमः स्वाहा श्रुतिक्षणदर्शनाय नमः स्वाहा महाकायाय नमः स्वाहा महाननयाय नमः स्वाहा विश्वक्षणाय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा यज्ञाय नमः स्वाहा संयुगापीडवाहनाय नमः स्वाहा तीक्ष्णातापाय नमः स्वाहा ओम हयर्षाय नमः स्वाहा सहायाय नमः स्वाहा कर्मकालविदाय नमः स्वाहा विष्णुप्रसादिताय नमः स्वाहा यज्ञाय नमः स्वाहा ओम समुद्राय नमः ओम बड़मुखाय नमः स्वाहा उतासनसहासाय नमः स्वाहा उतासनसहायाय नमः स्वाहा ओम प्रशान्तन्वे नमः स्वाहा उतासनाय नमः स्वाहा उग्रतेजसे नमः स्वाहा महातेजसे नमः स्वाहा जन्यायः नमः स्वाहा बीजकालविदे नमः स्वाहा ओम ज्योतिषायनाय नमः स्वाहा ओम सिद्धये नमः स्वाहा सर्वविग्रहाय नमः स्वाहा ओम सिखिने नमः स्वाहा ओम मुनिने नमः स्वाहा जटिने नमः स्वाहा जलिने नमः स्वाहा ओम मूर्तिजाय नमः स्वाहा मूर्धजाय नमः स्वाहा ओम बलिने नमः स्वाहा बैनविने नमः स्वाहा ओम पणविने नमः स्वाहा ओम तालिने नमः स्वाहा ओम खलिने नमः ओम कलंककटाय नमः स्वाहा ओम नक्षत्र विग्रह हस्ताय नमः स्वाहा गुणबुद्धये नमः स्वाहा ललाय नमः स्वाहा ओम अगमाय नमः स्वाहा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा ओम विश्वाहवे नमः स्वाहा ओम विभागाय नमः स्वाहा ओम सर्वगाय नमः स्वाहा अमुखाय नमः स्वाहा ओम विमोचनाय नमः स्वाहा सुरासुराय नमः स्वाहा हिरण्यकवचजताय नमः स्वाहा मेधजताय नमः स्वाहा बलचारिणे नमः स्वाहा महीचारिणे नमः स्वाहा ओम श्रुताय नमः स्वाहा ओम सूर्य तुर्य विदोनिताय नमः स्वाहा सर्वतुद्ध परिग्रहाय नमः स्वाहा सर्वतुर्य विनोदिने नमः स्वाहा व्यालरूपाय नमः स्वाहा गुहावासिने नमः स्वाहा गुहाय नमः स्वाहा मालिने नमः स्वाहा तरंगविदे नमः स्वाहा त्रिदशाय नमः स्वाहा त्रिकालरहिते नमः स्वाहा कर्म संबंध विवेचनाय नमः स्वाहा असुरेन्द्रानंदवदाय नमः स्वाहा ओम युधि शत्रु विनाशाय नमः स्वाहा सांग प्रसादाय नमः स्वाहा दुर्वासने नमः स्वाहा सर्वार्धिनिशीषाय नमः स्वाहा प्रस्कंदाय नमः स्वाहा यज्ञ विभाग दे नमः स्वाहा अतुल्याय नमः स्वाहा यज्ञ विभाग दाय नमः स्वाहा सर्वसवाय नमः स्वाहा सर्वसारिणी नमः स्वाहा दुर्वासासे नमः स्वाहा ओम वासाय नमः स्वाहा अमराय नमः स्वाहा ओम हेमाय नमः स्वाहा ओम हेमकाराय नमः स्वाहा निष्कमाय नमः स्वाहा ओम सर्वधारिणी नमः स्वाहा धरोदत्ताय नमः स्वाहा लोहिताक्षाय नमः स्वाहा ओमाक्षाय नमः स्वाहा विजयाक्षाय नमः स्वाहा विशारदाय नमः स्वाहा सहस्राय नमः स्वाहा उनिग्राय नमः स्वाहा ओमकर्त्रे नमः ओम सर्वपरिचरणिसाय नमः स्वाहा सर्वपरिचिर निवासानाय नमः स्वाहा मुख्याय नमः स्वाहा अमुख्याय नमः स्वाहा ओम देहाय नमः स्वाहा ओम कहालाय नमः स्वाहा सर्वकामदाय नमः स्वाहा सर्वकाल प्रसादाय नमः स्वाहा ओम सुबलासाय नमः स्वाहा ओम बलरूपधीते नमः स्वाहा सर्वकामवराय नमः स्वाहा ओम सर्वकाय नमः स्वाहा सर्वतोमुखाय नमः स्वाहा आकाशनिवासाय नमः स्वाहा निपातिने नमः स्वाहा अवसाय नमः स्वाहा ओम खगाय नमः स्वाहा ओम रौद्रूपाय नमः स्वाहा अंशवे नमः स्वाहा आदित्याय नमः स्वाहा बहुरश्मे नमः स्वाहा ओम सुवर्चिने नमः स्वाहा ओम वसुवेगाय नमः स्वाहा महावेगाय नमः स्वाहा मनवेगाय नमः स्वाहा निशाचराय नमः स्वाहा सर्ववासिने नमः स्वाहा श्रेयवासिने नमः स्वाहा उपदेशकराय नमः स्वाहा ओम अकराय नमः स्वाहा ओम मुनये नमः स्वाहा आत्मनिरलोकनाय नमः स्वाहा ओम संभवाय नमः स्वाहा संमग्नाय नमः स्वाहा सहस्रदाय नमः स्वाहा ओम पक्षिणे नमः स्वाहा ओम पक्षरूपाय नमः स्वाहा अधिशिप्ताय नमः स्वाहा विषामतमये नमः स्वाहा ओम उन्मादाय नमः स्वाहा ओम मदनाय नमः स्वाहा ओम कामाय नमः स्वाहा ओम असस्ताय नमः स्वाहा ओम अर्थकाराय नमः स्वाहा ओम असये नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम वामाय नमः स्वाहा ओम प्राचे नमः ओम स्वाहा ओम दक्षिणाय नमः ओम स्वाहा ओम वामनाय नमः स्वाहा ओम सिद्धोगिने नमः स्वाहा ओम महर्षये नमः स्वाहा ओम सिद्धार्थाय नमः स्वाहा ओम सिद्धसाधकाय नमः स्वाहा भिक्षवे नमः स्वाहा भिक्षुरूपाय नमः स्वाहा विपणाय नमः स्वाहा मृदवे नमः स्वाहा अभयनाय नमः स्वाहा विशाखाय नमः स्वाहा षष्ठीभागाय नमः स्वाहा ओम गवापतये नमः स्वाहा भद्रहस्ताय नमः स्वाहा ओम पिनाकाय नमः स्वाहा सदाशिवाय नमः स्वाहा नाउ इन
1: 360
0: हो गया जस्ट वी फिनिश
1: yeah
0: 700 so this is good meditation keep continuing meditation kali yuga om viskambine namaha swaha chamustamanaaya namaha swaha vrittavittakaraaya namaha swaha taalaaya namaha swaha madave namaha swaha madukulochanaaya namaha swaha vachaspataaya namaha swaha vajasenaaya namaha swaha nityamaasira pujitaaya namaha swaha brahmachariine namaha swaha lokachariine namaha स्वाहा सर्वचारिणे नमः स्वाहा विचारविदे नमः स्वाहा ओम ईशानाय नमः स्वाहा ओम ईश्वराय नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा निशाचरिणे नमः स्वाहा पिनाकवृत्ते नमः स्वाहा ओम निमित्तस्थान नमः स्वाहा ओम निमित्ताय नमः स्वाहा ओम नन्दये नमः स्वाहा ओम नन्दिकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम नन्दीश्वराय नमः स्वाहा ओम नन्दिने नमः स्वाहा ओम नन्दाय नमः स्वाहा नन्दिगोवर्धनाय नमः स्वाहा ओम भागहरिणे नमः स्वाहा नियश्रिये नमः स्वाहा ओम कालाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा पितामहाय नमः स्वाहा चतुर्मुखाय नमः स्वाहा ओम महालिंगाय नमः स्वाहा ओम चारुलिंगाय नमः स्वाहा ओम लिंगाध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम सुराध्यक्षाय नमः स्वाहा ओम योगाध्यक्षाय नमः स्वाहा युगवहाय नमः स्वाहा बीजाध्यक्षाय नमः स्वाहा बीजकर्ते नमः स्वाहा अध्यात्मनागतनाय नमः स्वाहा बलाय नमः स्वाहा इतिहासाय नमः स्वाहा सकल्पाय नमः स्वाहा गौतमाय नमः स्वाहा निशकराय नमः स्वाहा दम्भाय नमः स्वाहा ओम अमदाय नमः स्वाहा ओम वेदम्भ्याय नमः स्वाहा ओम वैश्याय नमः स्वाहा वसकराय नमः स्वाहा कलये नमः स्वाहा ओम लोकर्ते नमः स्वाहा ओम पशुपतये नमः स्वाहा ओम महाकर्ते नमः स्वाहा ओम अनौषधाय नमः स्वाहा ओम अक्षराय नमः स्वाहा ओम परमाय नमः स्वाहा ओम परमाय ब्राह्मणे नमः, स्वाहा ओम बलवते नमः, स्वाहा ओम शुक्राय नमः, स्वाहा ओम नित्ये नमः, ओम अनित्ये नमः, ओम शुद्धात्मने नमः, स्वाहा ओम शुद्धाय नमः, स्वाहा ओम मान्याय नमः, स्वाहा ओम गतागताय नमः, स्वाहा ओम बहुप्रसदाय नमः, स्वाहा ओम सुप्रश्नाय नमः, स्वाहा ओम दर्पणाय नमः, स्वाहा ओम अमित्रजिते नमः, स्वाहा ओम वेदकाराय नमः, स्वाहा ओम मंसकाराय नमः, स्वाहा ओम विदिशे नमः, स्वाहा ओम समरदर्दनाय नमः, स्वाहा ओम महाभिनिशाय नमः, स्वाहा ओम महाघोराय नमः, स्वाहा ओम वसिने नमः, स्वाहा ओम कराय नमः, स्वाहा अमनिज्वलाय नमः, स्वाहा महाज्वलाय नमः, स्वाहा ओम आदि विदुम्बाय नमः, स्वाहा ओम हुताय नमः, स्वाहा ओम विषे नमः, स्वाहा विषाय नमः, स्वाहा संग्राय नमः, ओम नित्यवर्षिणे सो नमः, ओम धूम्रकेताय नमः, स्वाहा ओम नीलपराय नमः, स्वाहा ओम आंगुलद्याय नमः, स्वाहा ओम शोभनाय नमः, स्वाहा ओम निवर्गाय नमः, स्वाहा स्वस्तिदाताय नमः, ये तो है शिष्याय नमः, ओम स्वतिभावाय नमः, ओम भागिने नमः, ओम भागकराय नमः, स्वाहा ओम लघवे नमः, स्वाहा उत्सन्नाय नमः, स्वाहा महंकराय नमः, स्वाहा महागरपराय नमः, स्वाहा कृष्णवचाय नमः, स्वाहा सुवर्णाय नमः, स्वाहा ओम सर्वदेहिनाम इंद्रियाय नमः, स्वाहा ओम महापादकाय नमः, स्वाहा महाहस्ताय नमः, स्वाहा महाकायाय नमः, स्वाहा महायशसे नमः, स्वाहा महाग्रभूमे नमः, स्वाहा महामात्राय नमः, स्वाहा महानेत्र्याय नमः, स्वाहा निशालाय नमः, स्वाहा महाकांताय नमः, स्वाहा महाकर्णाय नमः, स्वाहा महेष्टाय नमः, स्वाहा हणवे नमः, स्वाहा महाहणवे नमः, स्वाहा मानसाय नमः, स्वाहा महागम्पवे नमः, स्वाहा महागविषाय नमः, स्मरसानभाजे नमः, महाभक्षे नमः, ओम महेश्वराय नमः, स्वाहा मरुरसकाय नमः, स्वाहा अंतरात्मने नमः, स्वाहा मृगालाय नमः, स्वाहा ओम लंबानाय नमः, स्वाहा ओम लंबिस्थोसाय नमः, स्वाहा महामायाय नमः, स्वाहा ओम स्वाहा मयोपदानिये नमः, स्वाहा पयोनिधये नमः, स्वाहा महादंताय नमः, स्वाहा महाद्रष्टाय नमः, स्वाहा महाजीवाय नमः, स्वाहा ओम महामुखाय नमः, स्वाहा महानखाय नमः, स्वाहा महासुराय नमः, स्वाहा महाकोशाय नमः, स्वाहा महाजटाय नमः, स्वाहा प्रसन्नाय नमः, स्वाहा ओम प्रसादाय नमः, स्वाहा ओम प्रपत्याय नमः, स्वाहा गिरिसाधनाय नमः, स्वाहा स्नेहाय नमः, स्वाहा ओम आश्रयाय नमः, स्वाहा ओम अजिताय नमः, स्वाहा महामुनये नमः, स्वाहा वृक्षकाराय नमः, स्वाहा वृक्षकेतवे नमः, स्वाहा अनलाय नमः, स्वाहा बाहुबायनाय नमः, स्वाहा गंडलिने नमः, स्वाहा मेरुदाग्ने नमः, स्वाहा मेरुधाम्ने नमः, स्वाहा देवादि नमः, स्वाहा देवाधिपतये नमः, स्वाहा अथर्ववर्षीयाय नमः, स्वाहा सामवर्षीयाय नमः, स्वाहा साक्षसामिश्राय नमः, स्वाहा ऋक्सहस्रामितिक्षणाय नमः, स्वाहा ओम यजुपादभुजाय नमः, स्वाहा ओम गुह्याय नमः, स्वाहा प्रकाशाय नमः, स्वाहा जंगमाय नमः, स्वाहा अमोघराय नमः, स्वाहा प्रसदाय नमः, स्वाहा अभिज्ञाय नमः, स्वाहा ओम सुदर्शनाय नमः, स्वाहा उमकराय नमः, स्वाहा ओम प्रियाय नमः, स्वाहा ओम सर्वाय नमः, स्वाहा कनकाय नमः, स्वाहा कंचन छवये नमः, स्वाहा ओम नाभये नमः, स्वाहा नंदिकाराय नमः, स्वाहा ओम भावाय नमः, स्वाहा पुष्कर स्थापते नमः, स्वाहा ओम स्थिराय नमः, स्वाहा द्वादशाय नमः, स्वाहा ओम त्रासनाय नमः, स्वाहा ओम आद्याय नमः, स्वाहा ओम यज्ञाय नमः, स्वाहा यज्ञ सहिताय नमः, स्वाहा नक्तम नमः, ओम कलये नमः, स्वाहा ओम कालाय नमः, स्वाहा ओम मकराय नमः, स्वाहा ओम कालपूजिताय नमः, स्वाहा ओम सगुणाय नमः, स्वाहा ओम गुणकराय नमः, स्वाहा ओम भूतवाहन सारथे नमः, स्वाहा ओम भस्माय नमः, स्वाहा भस्मधाराय नमः, स्वाहा भस्मगोत्ने नमः, स्वाहा भस्मसयाय नमः, स्वाहा भस्मगोत्ने नमः, स्वाहा भस्मभूताय नमः, स्वाहा ओम तरवे नमः, स्वाहा ओम गणाय नमः, स्वाहा लोकपालाय नमः, स्वाहा अलोकाय नमः, स्वाहा ओमात्मने नमः, स्वाहा ओम सर्वपूजिताय नमः, स्वाहा ओम शुक्लाय नमः, स्वाहा त्रिशुकाय नमः, स्वाहा संपन्नाय नमः, स्वाहा अशुचय नमः, स्वाहा भूत निविशिताय नमः, स्वाहा ओम आश्रमासाय नमः, स्वाहा क्रियावस्थाय नमः, स्वाहा विश्वकर्मपतये नमः, ओम ओम बराय नमः, स्वाहा ओम विशाल शाखाय नमः, स्वाहा ओम प्रतिष्ठाय नमः, स्वाहा इट्स हाफ ऑफ द वे नाउ.
2: Okay. I think we will need
1: need rice more.
0: हरि ओम ओम अम्बुजालाय नमः स्वाहा सुनिश्चलाय नमः स्वाहा कपिलाय नमः स्वाहा कपिसाय नमः स्वाहा शुक्लाय नमः स्वाहा आयुषे नमः स्वाहा ओम अपराय नमः स्वाहा ओम पराय नमः स्वाहा ओम गंधर्वाय नमः स्वाहा ओम आदित्ये नमः स्वाहा तक्षरताय नमः स्वाहा सुविज्ञाय नमः स्वाहा सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम सुशारदाय नमः स्वाहा परशुधायुधाय नमः स्वाहा ओम देवाय नमः स्वाहा ओम अनुकारणे नमः स्वाहा सुबान्धवाय नमः स्वाहा तुम्बणिदाय नमः स्वाहा महाक्रोधाय नमः स्वाहा ऊर्ध्वरेतसे नमः स्वाहा जलेशयाय नमः स्वाहा उग्नाय नमः वसंकराय नमः स्वाहा ओम वंशाय नमः स्वाहा वंशनादानाय नमः स्वाहा अविन्दाय नमः स्वाहा अनिन्दिताय नमः स्वाहा सर्वांगरूपाय नमः स्वाहा मायाविने नमः स्वाहा ओम सुहृदाय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनल्लघाय नमः स्वाहा बन्धनाय नमः स्वाहा बन्धकर्ते नमः स्वाहा सुबन्धमीजाय नमः स्वाहा सहसारगे नमः स्वाहा सहज्ञानरथे नमः स्वाहा सकारमानाय नमः स्वाहा महाद्रष्टाय नमः स्वाहा मायायुधाय नमः स्वाहा बहुधानिन्त्याय नमः स्वाहा ओम सर्वाय नमः स्वाहा ओम शंकराय नमः स्वाहा ओम अगनाय नमः स्वाहा ओम अमरेशाय नमः स्वाहा ओम महादेवाय नमः स्वाहा ओम विश्वदेवाय नमः स्वाहा ओम सुराग्रिणी नमः स्वाहा अहिर्भुद्याय नमः स्वाहा अनिलाभाय नमः स्वाहा शेखितानाय नमः स्वाहा हविषे नमः ओम अजय पातके नमः स्वाहा अजय कपाते नमः स्वाहा ओम कापिले नमः स्वाहा त्रिशंके नमः स्वाहा अजिताय नमः स्वाहा ओम शिवाय नमः स्वाहा ओम धनंतरे नमः स्वाहा ओम धूमकेतवे नमः स्वाहा ओम स्कंदगाय नमः स्वाहा वैष्णवाय नमः स्वाहा ओम धात्रे नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम मित्राय नमः स्वाहा ओम तोष्ट्रे नमः स्वाहा ओम ग्रीवाय नमः स्वाहा ओम धराय नमः स्वाहा ओम प्रभवाय नमः स्वाहा ओम सर्वाय वाय नमः स्वाहा सर्वगाय वायवे नमः स्वाहा अर्थमे नमः स्वाहा सवित्रे नमः स्वाहा ओम रवये नमः स्वाहा ओम संगे नमः स्वाहा विधात्रे नमः स्वाहा ओम मान्धात्रे नमः स्वाहा भूतभावनाय नमः स्वाहा ओम विभवे नमः स्वाहा ओम बणविवाहिने नमः स्वाहा ओम सर्वकामगुणाय नमः स्वाहा सर्वकामगुणवाहाय नमः स्वाहा पद्मनाभाय नमः स्वाहा महागर्भाय नमः स्वाहा चन्द्रवस्त्राय नमः स्वाहा अनिलाय नमः स्वाहा अनलाय नमः स्वाहा बलवते नमः स्वाहा उपशान्ताय नमः स्वाहा पुराणाय नमः स्वाहा पुण्यसञ्जने नमः स्वाहा ओम ए नाम स्वाहा कुरुकर्त्रे नमः स्वाहा ओम कुरुवासिने नमः स्वाहा कुरुभूताय नमः स्वाहा ओम गुणदोषाय नमः स्वाहा ओम सर्वासाय नमः स्वाहा धर्मचारिणी नमः स्वाहा सर्वेषां प्राणिनां पतये नमः स्वाहा ओम देवादेवाय नमः सुमुख शक्ताय नमः स्वाहा ओम सते नमः स्वाहा ओम असते नमः स्वाहा ओम सर्वरत्नवियेद नमः स्वाहा ओम कैलासगिरिवासिने नमः स्वाहा हिमविद्नि संस्थाय नमः स्वाहा हिमबद्धि सहस्रसाय नमः स्वाहा ओम कुलहारिणे नमः स्वाहा ओम कुलकत्रे नमः स्वाहा ओम बहुविद्याय नमः स्वाहा ओम बहुप्रदाय नमः स्वाहा ओम वाणिज्याय नमः स्वाहा ओम वरदकिने नमः स्वाहा ओम वृक्षाय नमः स्वाहा ओम वकिलाय नमः स्वाहा ओम चंदनाय नमः स्वाहा ओम छदाय नमः स्वाहा ओम अलोलाय नमः स्वाहा ओम सारग्रीवाय नमः स्वाहा ओम महाजत्रे नमः स्वाहा ओम अलोचाय नमः स्वाहा महासौदाय नमः स्वाहा सिद्धकारिणी नमः स्वाहा ओम छदाय नमः स्वाहा ओम चंदनाय नमः स्वाहा ओम वृक्षाय नमः स्वाहा वरदकिने नमः स्वाहा वाणिज्याय नमः स्वाहा वकिलाय नमः स्वाहा बहुप्रदाय नमः स्वाहा बहुविद्याय नमः स्वाहा सिद्धार्थकारिणी नमः स्वाहा सिद्धार्थ छंदो व्याकरणोत्तराय नमः स्वाहा सिंहनादनाय नमः स्वाहा सिंह धर्मराष्ट्राय नमः स्वाहा सिंह गाय नमः स्वाहा सिंह बाहनाय नमः स्वाहा प्रभात्मने नमः स्वाहा जगत्काल स्थनाय नमः स्वाहा लोकहिताय नमः स्वाहा अमतरवे नमः स्वाहा सारंजाय नमः स्वाहा नवसक्रांगाय नमः स्वाहा अमकेतुमालिने नमः स्वाहा सवानाय नमः स्वाहा भूतालयाय नमः स्वाहा भूतपतये नमः स्वाहा अहोरात्राय नमः स्वाहा अग्निदिताय नमः स्वाहा सर्वभूतानां बाह्यत्रये नमः स्वाहा अवनिलाय नमः स्वाहा अभिभवे नमः स्वाहा भवनाय नमः स्वाहा अमोघाय नमः स्वाहा संगताय नमः स्वाहा अश्वाय नमः स्वाहा भोजनाय नमः स्वाहा प्राणधाराय नमः स्वाहा घृतमिदे नमः स्वाहा अमिताय नमः स्वाहा अमदक्षाय नमः स्वाहा सत्कृताय नमः स्वाहा युगधापिताय नमः स्वाहा गोपालाय नमः स्वाहा गोपतये नमः ओम ग्रामाय नमः स्वाहा गोमवर्चनाय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम हिरण्यवाय नमः स्वाहा प्रवेशिनाय नमः स्वाहा गुहालपालाय नमः स्वाहा प्रकिष्टारे नमः स्वाहा महर्षाय नमः स्वाहा जितकामाय नमः स्वाहा जितेन्द्राय नमः स्वाहा ओम गंधधराय नमः स्वाहा उपनिषदाय नमः स्वाहा 720
1: लिफ्ट
0: या नो नो वी क्रॉस्ड तपस्य शक्ताय नमः स्वाहा ओम रतये नमः स्वाहा ओम नराय नमः स्वाहा महागीताय नमः स्वाहा मायानित्याय नमः स्वाहा अप्सरो गण वेत्ये शिवाय नमः स्वाहा महाकेतवे नमः स्वाहा महाधातवे नमः स्वाहा नेनक्यसुनुचारे नमः स्वाहा नेकसानुचराय नमः स्वाहा ओम चलाय नमः स्वाहा ओम आवेदनीयाय नमः स्वाहा आदेशयाय नमः स्वाहा सगंध सुखावहाय नमः स्वाहा तोरणाय नमः स्वाहा ओम तारणाय नमः स्वाहा ओम बाताय नमः स्वाहा परिधने नमः स्वाहा परिखेचराय नमः स्वाहा संयोगार्थ वर्धनाय नमः स्वाहा संयोगाय वर्धनाय नमः स्वाहा ओम विद्याय नमः स्वाहा अतिविद्याय नमः स्वाहा ओम अतिविद्याय नमः स्वाहा ओम गुणाधिकाय नमः स्वाहा ओम नित्यमात्म सहाय नमः स्वाहा देवासुरपतये नमः स्वाहा ओम पतये नमः स्वाहा ओम युक्ताय नमः स्वाहा ओम युक्तभावे नमः स्वाहा देवी सुपर्णे नमः स्वाहा असडाय नमः स्वाहा उषपसाय नमः स्वाहा ओम ध्रुवाय नमः स्वाहा ओम हरिणाय नमः स्वाहा ओम हराय नमः स्वाहा आवर्तमाने भीवसे नमः स्वाहा ओम वसुश्रेष्ठाय नमः स्वाहा महापथाय नमः स्वाहा ओम शिरोमणिये नमः स्वाहा सर्वलक्षण सिद्धाय नमः स्वाहा अक्षाय रथ योगिने नमः स्वाहा ओम सर्वयोगिने नमः स्वाहा महाबलाय नमः स्वाहा सामग्नाय नमः स्वाहा ओ अस्मायानाय नमः स्वाहा तीर्थदेवाय नमः स्वाहा महारथाय नमः स्वाहा निर्विजयाय नमः स्वाहा ओम जीवनाय नमः स्वाहा ओम मंत्राय नमः स्वाहा ओम मंचाय नमः स्वाहा ओम शुभाक्षाय नमः स्वाहा बहुकर्णनाय नमः स्वाहा ओम रत्नभूताय नमः रत्नंगाय नमः स्वाहा महाबनी पाणिदेयाय नमः स्वाहा महार्णबणी पानविदे नमः स्वाहा ओम मूलाय नमः स्वाहा ओम विशलाय नमः स्वाहा ओम अमृताय नमः स्वाहा ओम व्यक्त्याय नमः स्वाहा ओम तपोनिधे नमः स्वाहा ओम आरोहराय नमः स्वाहा आधिरोहाय नमः स्वाहा शीलधारिणे नमः स्वाहा ओम महायसने नमः स्वाहा ओम सेनाकल्पाय नमः स्वाहा ओम महाकल्पाय नमः स्वाहा ओम योगाय नमः स्वाहा ओम योगकराय नमः स्वाहा ओम हरये नमः स्वाहा ओम युगरूपाय नमः स्वाहा ओम महारूपाय नमः ओम स्वाहा महानगनाय नमः स्वाहा ओम महानागनाहाय नमः स्वाहा ओम बधाय नमः ओम स्वाहा महानागगणाय नमः स्वाहा ओम न्याय निर्वाणाय नमः स्वाहा ओम मातपदाय नमः स्वाहा ओम पादाय नमः स्वाहा ओम पंडिताय नमः स्वाहा ओम अचलोपदाय नमः स्वाहा बहुमालाय नमः स्वाहा महामालाय नमः स्वाहा शशिनी हरसुलोचनाय नमः स्वाहा ओम विस्ताराय लवणाय कृपाय नमः स्वाहा ओम त्रियुगाय नमः स्वाहा ओम सफलदयाय नमः स्वाहा अप्रतिलोचनाय नमः स्वाहा विष्णवे नमः स्वाहा मणिसिद्धाय नमः स्वाहा ओम जटाधराय नमः स्वाहा ओम बिंदवे नमः स्वाहा ओम विसर्गाय नमः स्वाहा सुमुखाय नमः स्वाहा ओम सराय नमः स्वाहा ओम सारुभूताय नमः स्वाहा ओम सर्वायुधाय नमः स्वाहा ओम सहायाय नमः स्वाहा निवेदनाय नमः स्वाहा सुखा जाताय नमः स्वाहा सुगंधाराय नमः स्वाहा महाधनुषे नमः स्वाहा गंधपालिने नमः स्वाहा ओमशंकराय नमः स्वाहा उत्थानाय नमः स्वाहा ओमंथनाय बाहुबलये नमः स्वाहा मंधाननाय बहुल बावे नमः स्वाहा ओमशकलाय नमः स्वाहा सर्वलोचनाय नमः स्वाहा तलस्थालाय नमः स्वाहा करस्थालिने नमः स्वाहा ऊर्ध्वसमह नाननाय नमः स्वाहा ओमहते नमः स्वाहा ओमछत्राय नमः स्वाहा सुछत्राय नमः स्वाहा वीरव्यातलकाय नमः स्वाहा सर्वाक्षताय क्रमाय नमः स्वाहा ओमुन्नाय नमः स्वाहा ओम विरूपाय नमः स्वाहा ओम विकृताय नमः स्वाहा ओम दंडिने नमः स्वाहा ओम कुन्निने नमः स्वाहा विकुर्णवणाय नमः स्वाहा अरिहेच्छाय नमः ओम कुंभाय नमः स्वाहा ओम ककुभाय नमः स्वाहा ओम वज्रिणे नमः स्वाहा ओम शतविजाय नमः स्वाहा सहस्रपादे नमः स्वाहा सहस्र सुभद्रे नमः स्वाहा ओम देवेन्द्रराय सर्वदेव मापाय नमः स्वाहा ओम गुरवे नमः स्वाहा ओम सहस्रभावे नमः स्वाहा ओम सर्वांगाय नमः स्वाहा ओम शरण्याय नमः स्वाहा ओम सर्वलोककृते नमः स्वाहा ओम पैत्राय नमः स्वाहा त्रिककुळे मत्राय नमः स्वाहा कनिष्ठाय नमः स्वाहा कृष्णपिंगलाय नमः स्वाहा ब्रह्मदंड विनिर्माण

स्वाहा मनोजवाय नमः, स्वाहा चंदनीये नमः, स्वाहा चंदनीने नमः, स्वाहा पद्मनालग्राय नमः, स्वाहा सुरम्य भूतरणाय नमः, स्वाहा ओम नराय नमः, स्वाहा कणिकार महास्रग्विणे नमः, स्वाहा ओम नीलमौलये नमः, स्वाहा ओ पिनाकधृते नमः, स्वाहा उमापतये नमः, स्वाहा उमाकांताय नमः, स्वाहा जाह्वविभृते नमः, स्वाहा उमाधवाय नमः, स्वाहा ओम बाराय बाराय नमः, स्वाहा ओम वरदाय नमः, स्वाहा ओम वरेण्याय नमः, स्वाहा ओ सुमहास्वाय नमः, स्वाहा महाप्रसादाय नमः, स्वाहा दमनाय नमः, स्वाहा शत्रुघ्ने नमः, स्वाहा श्वेतपिंगलाय नमः, स्वाहा प्रीतात्मने नमः, स्वाहा परमात्मने नमः, स्वाहा प्रयात्मने नमः, स्वाहा प्रधानधृते नमः, स्वाहा सर्वपार्श्वमुखाय नमः, स्वाहा ओम त्रास्ख्याय नमः, स्वाहा धर्मसाधने नमः, ओम धर्मसाधारणोपराय जन्मः, स्वाहा चराचरात्मने नमः, स्वाहा स्वच्छात्मने नमः, स्वाहा अमृताय गोगविशेश्वराय नमः, स्वाहा सारदस्याय नमः, स्वाहा ओम वसुरादित्याय नमः, स्वाहा विश्वदवस्ये नमः, स्वाहा विश्वते सवितामृताय नमः, स्वाहा ओम व्यासाय नमः, स्वाहा ओम स्वर्गाय शुंगुपाय विस्ताराय नमः, स्वाहा पर्यायोनराय नमः, स्वाहा ओम ऋतये नमः, स्वाहा ओम संवत्सराय नमः, स्वाहा ओम मासाय नमः, स्वाहा ओम पाक्ष्याय नमः, स्वाहा ओ शंका समनाय नमः, स्वाहा ओम कलाभ्यो नमः, स्वाहा काष्ठाभ्यो नमः, स्वाहा लवेभ्यो नमः, स्वाहा मातृभ्यो नमः, स्वाहा मुहूर्ताभ्य क्षेपाश्यो नमः, स्वाहा ओ वर्णशिभ्यो नमः, स्वाहा क्षणभ्यो नमः, स्वाहा विषम क्षेत्राय नमः, स्वाहा 920 ओम विश्व क्षेत्राय नमः, स्वाहा प्रजा विजाय नमः, स्वाहा ओम लिंगाय नमः, स्वाहा आद्याय निर्गमाय नमः, स्वाहा ओम सती नमः, स्वाहा ओम असते नमः, स्वाहा ओम व्यक्ताय नमः, स्वाहा ओम अव्यक्ताय नमः, स्वाहा पित्रे नमः, स्वाहा मात्रे नमः, स्वाहा ओ पितामहाय नमः, स्वाहा स्वर्गद्वाराय नमः, स्वाहा प्रजाद्वाराय नमः, स्वाहा मोक्षद्वाराय नमः, स्वाहा त्रिविष्टापाय नमः, स्वाहा निर्वाणाय नमः, स्वाहा ओम राधनाय नमः, स्वाहा ओम ब्रह्मलोकाय नमः, स्वाहा ओम पराय गते नमः, स्वाहा ओम देवासुर विनिमात्रे नमः, स्वाहा देवासुर परायणाय नमः, स्वाहा ओम देवासुर गुरुवे नमः, स्वाहा ओम देवाय नमः, स्वाहा देवासुर नमस्कृताय नमः, स्वाहा देवासुर महामात्राय नमः, स्वाहा देवासुर गणाक्षत्राय नमः, स्वाहा देवासुर गणाध्यक्षाय नमः, स्वाहा देवासुर गणैकृत्यै नमः, स्वाहा देवी देवताय नमः, स्वाहा देवादि देवताय नमः, स्वाहा देवर्षये नमः, स्वाहा देवासुर वरप्रदाय नमः, स्वाहा देवासुरेश्वराय नमः, स्वाहा ओम विश्वेश्वराय नमः, स्वाहा ओम विश्वाय नमः, स्वाहा देवासुर महेश्वराय नमः, ओम सर्वदेवी मयाय नमः, स्वाहा अंजिन्त्याय नमः, स्वाहा देवतात्मने नमः, स्वाहा आत्मसमवाय नमः, स्वाहा उद्यमे नमः, स्वाहा त्रिविक्रमाय नमः, स्वाहा ओम वेदाय नमः, स्वाहा विरजाय नमः, स्वाहा नीरजाय नमः, स्वाहा अमराय नमः, स्वाहा इराय नमः, स्वाहा ओम हस्तीश्वराय नमः, स्वाहा बेग्राय नमः, स्वाहा देवसीमाय नमः, स्वाहा नरऋषभाय नमः, स्वाहा विबुधाय नमः, स्वाहा अग्नवराय नमः, स्वाहा ओम सूक्ष्माय नमः, स्वाहा सर्वदेवाय नमः, स्वाहा तपोमाय नमः, स्वाहा ओम सुक्ताय नमः, स्वाहा सुयुक्ताय नमः, स्वाहा शिवनाय नमः, स्वाहा वज्रिणे नमः, स्वाहा प्रसन्न प्रभुवाय नमः, स्वाहा अभिवाय नमः, स्वाहा जी ओम शिवनाय नमः, स्वाहा वज्रिणे नमः, स्वाहा प्रसन्न प्रभुवाय नमः, स्वाहा ओम निसर्गाय नमः, स्वाहा ओम पवित्राय नमः, स्वाहा सर्व पावनाय नमः, स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः, स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः, स्वाहा ओम गृहाय नमः, स्वाहा अव्याय नमः, स्वाहा प्रसन्न प्रभुवाय नमः, स्वाहा वज्रिणे नमः, स्वाहा शिवनाय नमः, स्वाहा ओम कांताय नमः, ओम निजाय सर्गाय नमः, स्वाहा ओम पवित्राय नमः, स्वाहा सर्व पावनाय नमः, स्वाहा ओम श्रृंगिणे नमः, स्वाहा ओम श्रृंग प्रियाय नमः, स्वाहा प्रभुजे नमः, स्वाहा राजराजाय नमः, स्वाहा निराजा

0: आय नमः स्वाहा अभिराय नमः स्वाहा अभिरामाय नमः स्वाहा सुरगणाय नमः स्वाहा अभिरामाय नमः स्वाहा सर्वसाधनाय नमः स्वाहा ललाटाक्षराय नमः स्वाहा विश्वदेवाय नमः स्वाहा हरिणाय नमः स्वाहा ब्रह्मवर्चसामाय नमः स्वाहा स्थावरणाम नमः स्वाहा स्थानपतये नमः स्वाहा स्थावरणाम पतये नमः स्वाहा नियमेन्द्रिय वर्धनाय नमः स्वाहा सिद्धार्थाय नमः स्वाहा सिद्धभूतार्थाय नमः स्वाहा अंचित्याय नमः स्वाहा सत्यव्रताय नमः स्वाहा ओम सुचये नमः स्वाहा व्रताधिपाय नमः स्वाहा ओम परस्परे नमः स्वाहा ओम ब्राह्मणे नमः स्वाहा ओम भक्तानां पुरयाय गतवे नमः स्वाहा ओम विमुक्ताय नमः स्वाहा ओम मुक्ततेशसे नमः स्वाहा ओम श्रीमते नमः स्वाहा श्रीवर्धनाय नमः स्वाहा ओम जगतपतये नमः स्वाहा इति शिव सहस्त्र नामावली शिवार्पणम् स्वाहा हर हर महादेव। शिव जी के 11
1: 1008
0: तो शिव जी को करके फिर करते हैं। बचा है बचा, वेट वेट हाँ तो 11 टाइम्स वी एवरीवन चैंट ओम नमः शिवाय स्वाहा टुगेदर। ओके ओ

स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा। तो खड़ा होके पूर्ण आहुति देंगे कंप्लीटली। नाउ एवरीवन स्टैंड अप एंड दिस इज द फाइनल सेक्रीफाइस एंड हवन। ये पूरा है, ये तो यही है, यही है। नहीं यही ठीक है, इसी को धारण लगाता हूँ। हरि ही ओम। ये यहाँ पे तुम बचा हुआ गिरा दीजिए। व्हाट एवर लेफ्ट ओवर वी गोइंग टू ऑफर नाउ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्व वै पूर्णः स्वाहा, सर्व वै पूर्णः स्वाहा, सर्व वै पूर्णः स्वाहा। ओम वसो पवित्रमसी, वसो पवित्रेण सहस्रधारेण देवस्त्वा पुनातु सविता वसोः। ओम शांति शांति शांति। फिर ये हाथ में लगाइए। हरि ही ओम, दो हाथ में लगा के अग्नि में दिखा के। ओम बलमसि बलमहि देहि, मन्योमसि मन्युमहि देहि, सहोसि सहोमहि देहि, तेजोसि तेजोमहि देहि, वीर्यमसि वीर्यमहि देहि, ओजोसि ओजोमहि देहि, मन्युमसि मन्युमहि देहि। ओम शांति शांति शांति। द फाइनल पीस प्रेयर। ओम देव शांति रंतरिक्ष गो शांति, हस्ते शांति रापा शांति रो सधयस।

0: सद्गमया तमसो मा जो मृत्युर्मा लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। हरिओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व्याधि विनाशनम विष्णु पाददकं भित्वा पुनर्जन्म न विद्यते चंदनं तु महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। जय बोलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को जय, सांब सदा शिव जी को जय, बोलिए प्यार से गणपति भगवान को जय, पशुपति नाथ को जय, सदा शिव को जय, चारों वेद को जय, महालक्ष्मी महासरस्वती को जय, चारों वेद को जय, सत्य सनातन धर्म को जय, विश्व गुरु महामंडलेश्वर महेश्वरानंद स्वामी जी को जय। हरि ओम।
1: पंडित जी धन्यवाद।
0: हरि ओम। थैंक यू वेरी मच।
1: एवरीवन डू योर सेल्फ, टेक योर फिंगर एंड लाइक दिस एंड मेक तिलक, ओके? दे शुड डिप देयर
0: सेल्फ। वी पुट लिटिल घी, पंडित स्वामी।

0: अलकपुरी जी महादेव की जय, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की ओम। हरिओम हरिओम।
1: विश्वगुरु परमांशी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेव की जय।

हरि चेतन ज्योत तुम्हारी है, निर्गुण से सगुण बन आए, भक्तन के हितकारी है। आपकी शरण में आए पड़े हम, दुर्बल दास दुखियारी है। नजर निहारो पार उतारो, आपका विरद विचारी है।

0: जी आपके चरण कमल बलिहारी है। श्री दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय। अलकपुर जी महादेव की जय।
1: विश्वागुरु परमहंसी स्वामी महेश्वरानंद गुरुदेवा की जय।
0: फर्दर अबाउट द प्रेयर्स टुमारो।
1: A dál o modlitbě si budeme říkat
0: Om
1: zítra.
0: Shanti, Shanti, Shanti.

0: chapters.
1: Vagy vannak fejezetek.
0: So there are many different things.
1: Különböző dolgok vannak.
0: So our Acharya Triveda Kapila.
1: Acharya Triveda Kapila.
0: Is with us.
1: Itt van velünk.
0: And I think he should tell about something, the Karamkand.
1: Elmondja, mi az a Karamkand.
0: And the effect.
1: És annak hatásai.
0: Of the ceremonies, pujas, which is very ancient science.
1: Puják és a ceremóniák következményeit, amelyek nagyon régi tudományok.
0: Welcome all of you, and welcome our dear Kapil Trivedi Panditji.
1: Köszöntelek benneteket, és Kapil Trivedi Panditjit.
0: Yes, Panditji, you are on the line. Floor is yours.
1: Panditji, tiéd a szó.
2: Sabse pratham, Gurudev ke charanon mein shat-shat vandan. Deep Narayana Bhagavan ki jai. Sadguru Dev ki jai. Aapka aur hamara sabka saubhagya hai ke Gurudev ke sanidhya mein, Gurudev ke aashirvaad se आप सब यहां पर एकत्रित हुए हैं और सामूहिक भगवान का पूजन यजन यज्ञ वगैरह करने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आपका और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है इस जीवन के अंदर होने वाले सभी प्रकार के दोषों के निवारण के लिए, सभी प्रकार के पापों के निवारण के लिए आप और हम सब ने इस मनुष्य जीवन के अंदर जो मनुष्य अवतार प्राप्त किया है, इस मनुष्य अवतार को धन्य बनाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात जब आपने मनुष्य योनि प्राप्त करी है, उस योनि का उद्धार के लिए ऐसे गुरु के चरण में आप और हम सब उपस्थित हुए हैं जो त्रिकालदर्शी हैं और आपको और हम सबको एक अच्छे रास्ते पर ले जा रहे हैं और आप और हम सब भगवान के बहुत करीब जा रहे हैं ऐसा आप और हम सब महसूस कर रहे हैं। तो गुरुदेव के चरणों में शत-शत वंदन प्रणाम। गुरुदेव, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि यज्ञ हवन पूजन से आपके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ सकता है। आप और हम सब जब भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के चरण में जाते हैं, गुरुदेव की शरण में जाते हैं,
0: नाउ वी डोंट नो एनीथिंग, वी वर ओनली लिसनिंग टू योर वॉइस। अनुवाद करता हूं। सो द पंडित जी सेठ,
1: पंडित जी आसमंता,
0: फर्स्ट ऑफ द एडोरेशन टू अवर गुरु परंपरा गुरुदेव,
1: गुरु परंपरांक फेस्ते की तिस्तरेतेत,
0: देन सेड वी आर ऑल ब्लेस्ड वन,
1: te mondta, hogy mind áldottak vagyunk.
0: That we are all here together.
1: Együtt lehetünk itt.
0: And that we are here in the shelter of the Gurudev.
1: Hogy Gurudev hajlékában lehetünk.
0: Same time that he mentioned about 8.4 million different kind of lives.
1: Megemlítette a 8,4 millió létformát.
0: But finally we got a human life.
1: És annak a végén az emberit.
0: Human life should be very pure.
1: Az emberi életnek nagyon tisztának kell lennie.
0: You have to come to the God as pure you were.
1: Tisztán kell jönni Istenhez.
0: So he said, we are lucky.
1: Azt mondta, szerencsések vagyunk.
0: And we are going to have some havan, yagya, puja.
1: Havanát, yagyát, pujat fogunk gyakorolni.
0: And so, let's go, what he said, short sentences. ठीक है? थोड़ा बोलना ताकि पूरा बताएं.
2: आप और सब, हम सब यज्ञ और हवन पूजन के बारे में जानेंगे. यज्ञ को करने से परमात्मा के बहुत ही

0: नजदीक आप और हम सब पहुंच सकते हैं
1: वाइल मेकिंग द यज्ञ
2: यज्ञात végzünk
1: सेरेमोनीज वी विल हैव ए इजी एक्सेस टू गॉड
2: ceremóniák által könnyen hozzáférünk Istenhez.
0: जीवन में आने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, जितने भी उतार चढ़ाव हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, उन सबको दूर करने के लिए शास्त्रों के अंदर वेदों के अंदर मंत्र और यज्ञ की एक विधि बताई गई है. अगर उस पूजन को उस विधि को और उस यज्ञ को सही विधि से सही प्रकार से अगर किया जाता है तो अपने जीवन की वो कठिनाइयां निश्चित रूप से दूर होती है.
1: इन लाइफ मेनी टाइम्स देयर इज अप एंड डाउन
2: életben सोक्सोर फे एस लेफेले szállunk.
1: देयर आर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस different kind of situations.
2: Különböző körülmények, helyzetek vannak.
1: But through this, doing the yagyas, ceremonies, it will lead us to our destination.
2: Yagyák és ceremóniák által a célunkhoz érünk.
0: ये एक प्रकार का विज्ञान है. यज्ञ कुंड की जो गुरुदेव ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार उसका निर्माण होना चाहिए, फिर साक्षात भगवान पुरुषोत्तम का मुंह माना गया है. उस मुंह के अंदर मंत्रों के माध्यम से जब अग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान की जाती हैं तो अग्नि जो है वो उन आहुतियों को साक्षात पुरुषोत्तम परमात्मा के चरणों में अर्पित करती है. और आप जिस मनोभावना से वो आहुति देते हैं उस आहुति को भगवान स्वीकार करते हैं और आपकी मन की इच्छा पूरी करते हैं.
1: अकॉर्डिंग टू द दिस इज साइंस
2: टू द मैन
1: वैदिक साइंस
2: वैदिक टू द मैन
1: अकॉर्डिंग टू द वास्तु शास्त्र एज आई टोल्ड बिफोर ही मेंशन्ड
2: अ वास्तु शास्त्र सरेंट हो जस कोरेबम मोंटम
1: एग्जैक्टली द यज्ञ ceremony must be done in proper measurement.
2: A yagya ceremóniát pontos mértékek szerint kell végezni.
1: And in the proper scale. East, west, north, south.
2: Megfelelő terjedelemben az égtájakat figyelembe véve.
1: And that fireplace for the yagya is like the mouth of the god.
2: Yagya tűzhely az olyan, mint Isten hegye.
1: And what the mantras is coming like from that supreme.
2: És a mantrák a legfelsőbbtől származnak.
1: And how you will think and you will offer your ceremonies there that will become fruitful for you, liberating you.
2: Ahogy gondolkozol, amit ott felajánlasz, az gyümölcsöző lesz számodra, felszabadít téged.
0: शास्त्रों में बताया गया है कि देवता जो हैं, वो मंत्रों के अधीन हैं. मंत्र जो हैं, वो साधकों और ब्राह्मणों के अधीन हैं. अगर मंत्र की शक्ति के माध्यम से आप यज्ञ पूजन करते हैं तो देवताओं को निश्चित रूप से इस पृथ्वी के ऊपर आना पड़ता है. और देव आकर के आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हुई चाहे सांसारिक हुई, इस जीवन की संपूर्ण कठिनाइयों को देवता दूर करते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है. और शास्त्र और वेद पूर्ण रूप से सत्य है, सनातन है. और इस धर्म की मूल आधार स्तंभ जो माने गए हैं वो शास्त्र और वेद माने गए हैं, तो उनकी सत्यता पे किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है.
1: द स्क्रिप्चर्स द वेदास उपनिषद एक्सेट्रा their mantras, which influences the devas.
2: Iratok, védek, upanishadok, mantrái hatnak a dévekre.
1: Invite them.
2: Behívja őket.
1: And these mantras, these ceremonies is perfection by those scholars, so-called the pandit.
2: Mantrák, ceremóniák olyan tudósok, akiket panditoknak hívunk, azoknak a munkái.
1: Through their perfection, the devas, through these mantras which will be chanted, devas have to come from the astral world or heaven or whatever you call, to that place where the yagya is.
2: Az ő tökéletes munkájuk által a déváknak el kell jönniük a mennyországból vagy az asztrális síkról arra a helyre, ahol a jagja van.
1: And through that chanting of that mantras and presence of the devas, definitely it will help you, it will remove your negative energy, remove your problems, and it is a way to liberation.
2: Mantrák zengetése és a dévák jelenléte által elmennek a negatív energiáid, és a felszabadulás felé haladsz.
1: So this is not only just what we call a mantra chanting, it is the science, it is Sanatan.
2: Ez nem csak egy mantra zengetés, hanem tudomány, Sanatan.
1: It is eternal.
2: Örök.
1: Unchangeable.
2: Megváltoztathatatlan.
1: It is the truth.
2: Az igazság.
1: Is that scriptures.
2: Ez van az iratokban.
1: That granthas.
2: A grantákban.
0: ये जब अनुष्ठान या पूजा या मंत्र जब ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में अगर आप करते हैं और सामूहिक रूप से करते हैं तो इसका 100 गुना फल आपको प्राप्त होता है. आप अगर एक आहुति प्रदान करते हैं तो 1,00,000 आहुतियों का आपको फल प्राप्त होता है. ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि गुरु जो होता है वो धर्म के मार्ग पे, भगवान के मार्ग पे आपको प्रशस्त करता है. तो ऐसे गुरुदेव की शरण में आप यहाँ पर आए हुए हैं तो आप इस लाभ को अपने जीवन में प्राप्त करें. ऐसा मेरा और गुरुदेव के चरणों में आप सबके लिए मेरी तरफ से वंदन है, प्रणाम है.
1: So such a opportunity, such a occasion, such a situation that such environment creates where this puja takes place. But if there is the presence of the Sadguru Dev, then one mantra's benefit appears to the aspirant 100,000 times more, not only once or twice. The one mantra, one ahuti, one offering in this fire, in the presence of the Gurudev, because Gurudev becomes your witness. And one mantra's benefit turns to you 100,000 times.
2: Az már önmagában
1: it is your, it is said mantras, it is said rishis, that is a science.
2: Tehát a rishik, a szentek azt mondták, hogy önmagában nagy lehetőség ezt a mantrát, ceremóniát gyakorolni, de hogyha Sadguru Dev jelen van, akkor egy mantra egy ahott kimondásának 100,000-szeres ereje van, mert Sadguru Dev tanúja a mantrádnak.
0: एक मंत्र के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा.
1: With his one mantra chanting, he is going to finished his speech.
2: Egy mantra zengetésével fogja befejezni.
0: Dhyana moolam gurur murti, puja moolam guru padam, mantra moolam gurur vakyam, moksha moolam guru kripa. ध्यान करने के योग्य गुरु जी की प्रतिमा है, गुरु जी की मूर्ति है. ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा के योग्य सदा सर्वदा उनके चरण हैं. पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र के समान उनके द्वारा दिए जाने वाले जो वाक्य हैं, जो प्रवचन हैं, जो आप सबको प्राप्त हो रहे हैं, वो मंत्र के समान निश्चित रूप से आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की शरण में है. मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, और मोक्ष के समान, मतलब इस 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के समान गुरु की जो कृपा है, वो उस कृपा से ही व्यक्ति इस जीवन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है. मैं अपनी वाणी को इन मंत्र के माध्यम से गुरु चरणों में अर्पित करना चाहूंगा. आप सब एक बार बोलिएगा, सद

0: बोलो मंत्र, बस इतना ही स्तुत।
1: गुरु जी का आदेश हुआ है, एक स्तुति आपके समक्ष माता जी की है, देवी की स्तुति है, उसको बोलना चाहूंगा।
0: इट इज वन प्रेयर
2: इमा
0: एडोरेशन
2: ग्लोरी
0: टू डिवाइन मदर
1: ललिता त्रिपुरा सुंदरी की यह स्तुति है। इस स्तुति के अंदर यह बताया गया है कि हे भगवान, मैं आपकी पूजा अर्चना मंत्र किसी प्रकार से भी नहीं जानता हूं, पर मैं अपना सिर आपके चरण में अर्पित करता हूं। मैं आपके चरणों में अपना संपूर्ण शरीर मन वचन कर्म से आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा कीजिए।

श्रीदीप नारायण भगवान देवादिदेव देवेश्वर महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन धर्म ओम शांति।

0: दीप नारायण भगवान
1: जय।
0: गुड इवनिंग एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्ध पीठ परंपरा। ऑल डियर वंस, ब्रदर्स, सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, ब्लेसिंग इज कमिंग टू यू फ्रॉम अलकपुरी जी सिद्ध

0: नारायण भगवान की
1: जय।
0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: देवपुरी श्या महादेव
1: जय।
0: माधव कृष्ण भगवान
1: जय।
0: ओम शांति शांति।
2: जय।

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलचलं सर्वद्धि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतम।

ईश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। श्री दीप नारायण भगवान की, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स हियर इन दिस हॉल एंड ऑल डियर भक्तास राउंड द वर्ल्ड हुज विद अस थ्रू आवर वेबकास्ट। वेलकम। इट्स अ ब्यूटिफुल डे। इट वॉज द महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि सेरेमोनीज पूजास एंड वी हैव एस्टेब्लिश्ड हियर ब्यूटिफुल न्यू शिव टेम्पल। देयर वॉज अमावस्या। अमावस्या मीन्स द डार्क नाइट, डार्क मून इज ऑपोजिट टू द फुल मून।

सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चिदुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दीप नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव की, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म

परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिः द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमाम्यम्। अलकपुरी जी महादेव की, देवाजी देव शिव स्वरूप देवपुरी जी महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, आराध्य सतगुरुदेव हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की, सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की जय। आराध्य गुरुदेव के सभी परम भक्त, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। गुरु पूनम का पर्व, आप सभी को ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की ओर से आशीर्वाद, ब्लेसेड सेल्फ, स्पिरिचुअल सीकर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, टुडे ऑन दिस होली ओकेशन ऑफ श्री गुरु पूर्णिमा, blessing is coming from Om Sri Alakpuri Ji Siddhpeeth Parampara, Holy Land Bharat. Welcome all of you here and those who are in other countries. The Guru Purnima has many meanings. First, what Upanishad and Ved says, Tamso ma jyotirgamaya, lead us from the darkness to the light. Agyan se gyan ki taraf. आराध्य गुरुदेव श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान कहते थे, ज्ञानहीना पशु समाना, विदाउट नॉलेज वन इज लाइक ए एनिमल, नॉलेज इज द लाइट and ignorance is the darkness. The light of the knowledge is not this physical light which we see with our physical eyes, but it is the light which is within ourself in each and every entity. But out of 8.4 million different creatures, human have got a special body and got a powerful tool that's called intellect. But the intellect, buddhi jo hai, buddhi ko gyan विद्या चाहिए, बुद्धि को
को जैसी शिक्षा जैसा ज्ञान दोगे वैसा ही व्यक्ति सोचेगा बनेगा. What kind of education you will get like that you will be and you will think like that. In the police training, the policeman goes, he get the training for the police, how to act, how to behave, how to be. His thinking, his knowledge, a training makes him a police. A driver gets the knowledge how to drive and he becomes the driver. So the driver similarly चोर को भी ट्रेनिंग मिलती है तो वो चोर बनता है, आतंकवाद बनता है या और भी बनता है जैसी शिक्षा मिलती है. Therefore the intellect needs a particular education. Second, the education for the humans is very important, and that is the spiritual and ethic principles, where one understands the value of the Sanatana. The Sanatana values makes the human a human. So this, the education is from the master, from the guru. Only the language is different. You call master and in Hindi we say guru. That's all. झगड़ा केवल भाषा का है और कुछ भी नहीं. आप रामायण गीता पढ़ोगे तो मुसलमान शायद नहीं समझेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे. और अगर वो कुरान में उर्दू पढ़ेंगे तो आप स्वीकार नहीं करोगे, क्यों आप नहीं समझ रहे हो. बात वही है. अच्छी बात रामायण भी कहती है, अच्छी बात कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है. डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज. इज ओनली वन. एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कोई है. दूजा कहता है कि मारी मामी है, कोई है. तारा मामा री बू है, कोई. मारी माँ है, मामी नहीं कहना. ये क्या हमारी दादी है, क्या हमारे माँ है. दूसरे कहता है हमारी बेटी है. तीसरे कहता हमारी बहन है. और दूसरा कहता है हमारी बुआ है. दूसरा कहता हमारे काकी है. आंटी नहीं है बेटा, आजकल कह के आंटी. ये आंटी थारी बापरी आड़ी क्यों गंदी गंदी बातें करो. है काका काकी बाजी बाजी वो करो. लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है, हमारी पोती है. है वो महिला एक ही है कि नहीं. एक ही महिला है. नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया. दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है. बट है वो एक ही. सिमिलरली गॉड इज वन विच गॉड हैज नो नेम. And all are talking about a God for oneness. So this education, the ethic and spiritual education, we get in the Gurukul. Gurukul means school.
अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाटन गुरुकुल में भर्ती करिया है। नहीं बाप जी, हमारे गुरुकुल में नहीं जानो, हाँ हमारे स्कूल में जानो है। उन्होंने ठा तो है को नहीं, बाप जी हमारे टावरों ने हिंदी नहीं पढ़ा, नहीं अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरों ने नौकरी नहीं लागे, नौकरी पड़ी खाडा रे माए। मनुष्य बनाओ बच्चे को, आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले, संस्कृत का कोई मास्टर ही को नहीं मिले, न अंग्रेजी पढ़ी रहा रोता फिर मन झाड़ू लगावाने को नहीं लागे। इसलिए दुर्भाग्य है कि हम हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए कि तुम्हारे पास गुरु ज्ञान नहीं है। तुमने वो ज्ञान सीखा, तुमने वो संस्कार सीखे, जो संस्कार तुम्हारे को आगे नहीं बढ़ा सकता है, क्योंकि वो संस्कार आपको वो संस्कृति नहीं बनाने देगा। संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कृति से मानव बनता है, मानवता की देश की रक्षा करता है संस्कार। आज तो बस नौकरी चाहिए पया, अंग्रेजी बोलो, नहंग जगह अंग्रेजी बोले बेटा, न केवल अंग्रेजी में भाषण दोगे, नहीं नहीं हिंदी में बोलू बाप जी, बोलो आदि कचरी है? हमें अंग्रेजी बोले, मैंने कहा मैं रस तो पूछ कर जानो के स्टेट, अरे बाबा जी स्टेट जाओ, अरे की स्टेट में जाऊं, गुजरात में जाऊं के राजस्थान में जाऊं के मध्य प्रदेश में जाऊं, हमें स्ट्रेट तो नहीं कह रही, स्टेट स्टेट आथोरी अंग्रेजी, अरे पूरी सीखी नहीं। बंगाल से एक लड़का गया इंग्लैंड पढ़ने के लिए, 3 साल के बाद वापस आया और रविंद्रनाथ टैगोर के पास गया, अंग्रेजी बोल रहा है, टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं, तो टैगोर साहब बंगाली बोल रहे हैं तो वो टैगोर साहब को कहते मुझे अंग्रेजी पसंद है, तो टैगोर साहब ने कहा अच्छी बात है बोलो अंग्रेजी, वो 4 शब्द नहीं कियो, और टैगोर साहब ने कहा कि बेटा तू अंग्रेजी ही क्यों बिना ही तू बंगाली भूल गो है, तो तुम लोग अंग्रेजी पूरी ही क्यों बिना थे, मारवाड़ी ने राजस्थानी भूल गया, हमारी मातृभाषा है उसके द्वारा ही, उसी भाषा के द्वारा तुम्हारी शोभा है और दूसरी शोभा नहीं है। हमारे देश की संस्कृति वही काम आएगी। कहा है कि बणियाणी रेशी नहीं, रेशी सुधारी, होनारी परिजाव सी के बाबी कुमारी है, कि बणियाणी रे नहीं निरेशी सुथारी, आ होनारी परी जई के बाबी कुमारी। कौन कह रही है? रावण को, रावण की पत्नी के, रावण तू बना करके हट करके सीता को लाया, वो नहीं रहेगी, वो थाकी को नहीं है, रेसी सुथारी थारी है वो ही रहूंगी है, हट करियो तो होनारी लंका परी जई। कौन कहवे? कुंभकर्ण की बाबी मंदोदरी कह रही है। तो इसलिए थे उदार लायोड़ी भाषा ने, पढ़ने पेट भरा मत करो, बुद्धि ज्ञान उसमें ज्ञान भरा है संस्कृति के अंदर में। एनी हाउ सॉरी दैट आई हैव टू स्पीक बिटवीन इन हिंदी एंड संस्कृत, आई डोंट नो सो आई हैव टू स्पीक लिटिल बिट इंग्लिश बिकॉज ऑल ऑफ यू, but I'm telling these Indians they should learn their mother tongue and then after they should learn English. They don't know English and they forgot the Hindi. I asked someone address, I have very wish the direction is going there, where is that place? So say state
is not a path, direction, straight. But वो straight तो आता नहीं है.

It is very important because of the education. Sanatan human qualities, human abilities. This is a Guru Purnima, and then is a worship of that divine who gave you the knowledge. Then is the birthday of Bhagavan Vedvyasa, and every disciple adores, remembers to keep this living culture. So Guru Purnima is a festival of the culture. To protect the culture is called a living culture. Sanatana Dharma is a living Dharma. Sanatana Dharma is a living Dharma. What does it mean? What means the living Dharma? One mother gives a birth to a child. It is the dharma of the mother to give a birth to the child. It's her dharma, wo Sanatana Dharma. A one tree gives you fruit. It is the dharma of the fruit tree to give the fruit. एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बच्ची को जन्म देती है, वो उनका धर्म जो है वो सनातन धर्म है. और इस युग के अंदर, इस आधुनिक युग में गुरु के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है. कौन सा गुरु? थारा मास्टर स्कूल में. स्कूल के मास्टर आपके गुरु हैं. इसलिए और सभी सिस्टम विल स्टॉप ब्लॉक, बट द सनातन धर्म गुरु एंड डिसाइपल विल एवर एंड एवर विल लास्ट. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इटर्नल रिलीजन ऑफ सनातन. द रिलेशन ऑफ द मदर, चाइल्ड, हस्बैंड, wife, nature, etc., etc. Therefore, the Guru Purnima has a great meanings than other any festivals. हम मनाते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी. वो एक की जन्माष्टमी मन रही है, लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है अरबों खरबों महर्षि ऋषि मुनियों की और आने वाले संतों की वो बनती रहेगी. वही इसीलिए दैट इज द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल. दैट्स कॉल्ड लिविंग फेस्टिवल. गुरु पूर्णिमा इज लिविंग फेस्टिवल, जिंदा. और सब संप्रदाय चली जाएगी, लेकिन ये सनातन संस्कृति कभी नहीं मिटेगी, क्योंकि ये शिष्य और गुरु का नाता है. आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद. आप आए, यू केम ऑल, वेलकम. नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद, देन आफ्टर विल बी भजन, एंड भजन के बाद में आनंद, और आनंद के बाद में जागृत. तो जागृत, सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा. कोई तो करेगा ऐसा, दूसरा कहेगा हाँ है. तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यही पे होना के बाबू जी कमरों के कमरा तो गणे जा हुई जा. कमरा की कोई कमी नहीं है, हमें तो कमरा खूब है. पर माँ कोई नाग देवता बैठा वे तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है. जब को ध्यान राख जो भाई सरफ अरफ आ जाता है, इसलिए इधर उधर जाते हो. और दूसरे ये बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने की.

लिए पेशाब करने के इधर उधर, ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना। अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा। कहला कोई को नहीं, पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कहेंगे बाप जी ओ अटे बैठो तो। इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है, भजन होंगे रात्रि भर, आप भजन गाना, सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे, 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की, और उसके बाद में यहां सभी सज्जन आएंगे दर्शन करेंगे तो कार्यक्रम चलता रहेगा। अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए, और आफ्टर वन आवर ईटिंग इट विल बी अगेन द सत्संग। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, इफ यू वॉन्ट टू लिसन द भजन्स देन इट विल बी webcast and bhajans whenever you like, you can put on your television and you can see or hear the bhajan. Bol Sanatan Dharma Ki Jai, Satguru Dev Ki Jai.

हलकपुरी जी महादेव की, देवा जी देव शिव स्वरूप देवपुरी जी महादेव की, आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की, आराध्य सतगुरुदेव हिंदू धर्म सम्राट श्री स्वामी माधवानंदपुरी जी महाराज की, सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की जय। आराध्य गुरुदेव के सभी परम भक्त, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है। गुरु पूनम का पर्व, आप सभी को ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की ओर से आशीर्वाद, ब्लेसेड सेल्फ, स्पिरिचुअल सीकर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड, टुडे ऑन दिस होली ओकेशन ऑफ श्री गुरु पूर्णिमा, ब्लेसिंग इज कमिंग फ्रॉम ओम श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा, होली लैंड भारत। वेलकम ऑल ऑफ यू हियर एंड दोज हु आर इन अदर कंट्रीज। द गुरु पूर्णिमा हैज मैनी मीनिंग्स। फर्स्ट व्हाट उपनिषद एंड वेद सेज, तमसो मा ज्योतिर्गमय, लीड अस फ्रॉम द डार्कनेस टू द लाइट, अज्ञान से ज्ञान की तरफ। आराध्य गुरुदेव श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान कहते थे, ज्ञानहीना पशु समाना, विदाउट नॉलेज वन इज लाइक ए एनिमल। नॉलेज इज द लाइट एंड इग्नोरेंस इज द डार्कनेस। द लाइट ऑफ द नॉलेज इज नॉट दिस फिजिकल लाइट विच वी सी विद अवर फिजिकल आईज, बट इट इज द लाइट विच इज विद इन अवर सेल्फ इन ईच एंड एवरी एंटिटी। But out of 8.4 million different creatures, human have got a special body and got a powerful tool that's called intellect. But the intellect, buddhi jo hai, buddhi ko gyan, विद्या चाहिए। बुद्धि को जैसी शिक्षा जैसा ज्ञान दोगे वैसा ही व्यक्ति सोचेगा बनेगा। व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन यू विल गेट लाइक दैट यू विल बी एंड यू विल थिंक लाइक दैट। In the police training, the policeman goes, he gets the training for the police, how to act
how to behave, how to be. His thinking, his knowledge, a training makes him a police. A driver gets the knowledge how to drive and he becomes the driver. So the driver similarly, चोर को भी ट्रेनिंग मिलती है तो वो चोर बनता है, आतंकवाद बनता है या और भी बनता है जैसी शिक्षा मिलती है. Therefore the intellect needs a particular education. Second, the education for the humans is very important, and that is the spiritual and ethic principles, where one understands the value of the Sanatana. The Sanatana values makes the human a human. So this, the education is from the master, from the guru. Only the language is different. You call master and in Hindi we say guru. That's all. झगड़ा केवल भाषा का है और कुछ भी नहीं. आप रामायण गीता पढ़ोगे तो मुसलमान शायद नहीं समझेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे. और अगर वो कुरान उर्दू पढ़ेंगे तो आप स्वीकार नहीं करोगे, क्यों आप नहीं समझ रहे हो. बात वही है. अच्छी बात रामायण भी कहती है, अच्छी बात कुरान भी कहती है, बाइबल भी कहती है. डिफरेंट इज ओनली द लैंग्वेज. इज ओनली वन. एक कहता है कि मेरे दादी सा है, कोई है. दूजा कहता है कि मारी मामी है, कोई है. तारा मामा रिबू है, कोई. मारी माँ है, मामी नहीं कहना. एक है हमारी दादी है, एक है हमारे माँ है, दूसरे कहता है कि हमारी बेटी है, तीसरे कहता हमारी बहन है, और दूसरा कहता हमारी बुआ है, दूसरा कहता हमारे काकी है. आंटी नहीं है बेटा, आजकल कह के आंटी, ये आंटी थारी बापरी. आड़ी क्यों गंदी गंदी बातें करो, है काका काकी बाजी बाजी वो करो. लेकिन दूसरा कहता मेरी बेटी है, हमारी पोती है. है वो महिला एक ही है कि नहीं. एक ही महिला है, नाम से बांट दिया, भाषा से बांट दिया. दादी है, माँ है, बेटी है, बहन है, बुआ है, काकी है, पोती है, बट है वो एक ही. सिमिलरली गॉड इज वन, व्हिच गॉड हैज नो नेम. And all are talking about a God for oneness. So this education, the ethic and spiritual education, we get in the Gurukul. Gurukul means school. अब हमारे हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं कि जाटन गुरुकुल में भर्ती करिया है. नहीं बाप जी, हमारे गुरुकुल में नहीं जानो, हाँ हमारे स्कूल में जानो है. उन्होंने ठा तो है को नहीं. बाबूजी मां टावर ने हिंदी नहीं पढ़ा, नहीं अंग्रेजी पढ़ाओ तो नौकरी लागी. कितनी दुर्भाग्य की बात है कि तुम लोग इस प्रकार से सोचते हो कि हिंदी पढ़ाओ तो हमारे छोरा ने नौकरी नहीं लागे. नौकरी पड़ी खा डरे माए. मनुष्य बनाओ बच्चे को. आज हिंदी का टीचर ही को नहीं मिले,
સંસ્કૃતના કોઈ માસ્ટરી કોની મિલે ને અંગ્રેજી પડ્યો રહો તો ફેરે મને ઝાડુ લગાવવાની કોઈ નહીં રાખે. ઇસલિયે દુર્ભાગ્ય હૈ કે હમ હમારી સંસ્કૃતિ કો છોડ દિયા, ઇસલિયે કે તુમ્હારે પાસ ગુરુ જ્ઞાન નહીં હૈ. તુમને વો જ્ઞાન સિખા, તુમને વો સંસ્કાર સીખે, જો સંસ્કાર તુમ્હારે કો આગે નહીં બઢા સકતા હૈ, ક્યોંકિ વો સંસ્કાર આપકો વો સંસ્કૃતિ નહીં બનાને દેગા. સંસ્કારો સે સંસ્કૃતિ બનતી હૈ ઓર સંસ્કૃતિ સે માનવ બનતા હૈ, માનવતા કી દેશ કી રક્ષા કરતા હૈ સંસ્કાર. આજ તો બસ નોકરી ચાહીજે પયા અંગ્રેજી બોલો, નહેંગ જગો અંગ્રેજી બોલે બેઠા. મે કેવો અંગ્રેજી મે ભાષણ દો કે નહીં, હિન્દી મેં જ બોલું બાપજી, બોલો આદી કચરી. અમે અંગ્રેજી બોલે, મને કહે મે રસ્તો પૂછ કર જાણો કે સ્ટેટ, અરે બાબાજી સ્ટેટ જાઓ. અરે કી સ્ટેટ મે જાઉં, ગુજરાત મે જાઉં કે રાજસ્થાન મે જાઉં કે મધ્યપ્રદેશ મે જાઉં. અમે સ્ટ્રેટ તો નહીં કહે, સ્ટેટ સ્ટેટ. આ થોડી અંગ્રેજી, અરે પૂરી શીખી નહીં. બંગાળ સે એક લડકા ગયા ઇંગ્લેન્ડ પઢને કે લીએ, 3 સાલ કે બાદ વાપસ આયા ઓર રવિન્દ્રનાથ ટાગોર કે પાસ ગયા. અંગ્રેજી બોલ રહા હૈ ટાગોર સાહેબ, બંગાળી બોલ રહે હૈ તો ટાગોર સાહેબ બંગાળી બોલ રહે હૈ તો ડબો ટાગોર સાહેબ કો કહે મુજે અંગ્રેજી પસંદ હૈ. તો ટાગોર સાહેબ ને કહા અચ્છી બાત હૈ બોલો અંગ્રેજી. વો 4 શબ્દ નહીં કયો. આ ટાગોર સાહેબ ને કહા કે બેટા તું અંગ્રેજી હિ કયો બિના હી તું બંગાળી ભૂલ ગો હે, તો તુમ લોગ અંગ્રેજી પૂરી હિ કયો બિના થે, મારવાડી ને રાજસ્થાની ભૂલ ગયા. હમારી માતૃભાષા હૈ ઉસકે દ્વારા હિ, ઉસી ભાષા કે દ્વારા તુમ્હારી શોભા હૈ ઓર દૂસરી શોભા નહીં હૈ. હમારે દેશ કી સંસ્કૃતિ વહી કામ આયેગી. કહા હૈ કે બણિયાણી રેશી નહીં, રેશી સુધારી હોનારી પરિજાવ સી કે બાબી કુમારી હે, કે બણિયાણી રહે નહીં ને રેશી સુથારી આ હોનારી પરી જઈ કે બાબી કુમારી. કોણ કહે રહી હૈ, રાવણ કો, રાવણ કી પત્ની કે રાવણ તું બના કરકે હટ કરકે સીતા કો લાયા વો નહીં રહેગી, વો થાકી કો નહીં હૈ, રેસી સુથારી થારી હૈ વોહી રહુંગી હે, હટ કર્યો તો હોનારી લંકા પરી જઈ. કોણ કહેવે કુંભકર્ણ કી બાબી મંદોદરી કહે રહી હૈ. તો ઇસલિયે થે ઉદાર લાયોડી ભાષા ને, પણ પેટ ભરા મત કરો, બુદ્ધિ જ્ઞાન ઉસમે જ્ઞાન ભરા હૈ સંસ્કૃતિ કે અંદર મે. એની હાઉ સોરી દેટ આઈ હેવ ટુ સ્પીક બિટવીન ઇન હિન્દી એન્ડ સંસ્કૃત, આઈ ડોન્ટ નો, સો આઈ હેવ ટુ સ્પીક લિટલ બિટ ઇંગ્લિશ બીકોઝ ઓલ ઓફ યુ, બટ આઈ એમ ટેલિંગ દિસ ઇન્ડિયન્સ દે શુડ લર્ન ધેર મધર ટંગ and then after they should learn English. They don't know English and they forgot the Hindi. I asked someone address, I have very wish the direction is going there. Oh, where is that place? So say state. State is not a path, direction is straight. But wo straight to aata nahi hai. Aur મહારાજ જી વો ક્યાં કહે યોગા કે અંદર હમે, તો હમ કહેતે કે અચ્છા ભાઈ, અરે ભાઈ ગાડી ચલાવો કોન્સન્ટ્રેશન કરો, તો વો કે કોણ સા સ્ટેશન, અરે બાપજી કોણ સા સ્ટેશન ચાલ રહ્યા હું નહીં, લો કોન્સન્ટ્રેશન ને કોણ સા સ્ટેશન. આ થોડી અંગ્રેજી ને આ થોડી હિન્દી, સહી વાત હૈ કે નહીં.
इसलिए दैट्स वाई गुरु पूर्णिमा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सनातन वैल्यूज ऑफ द ह्यूमन लाइफ ह्यूमन क्वालिटीज ह्यूमन एबिलिटीज दिस इज अ गुरु पूर्णिमा एंड देन इज अ वर्शिप ऑफ दैट डिवाइन हु गेव यू द नॉलेज देन इज अ बर्थडे ऑफ भगवान वेद व्यास एंड एवरी डिसाइपल एडोर्स रिमेंबर्स टू कीप दिस लिविंग कल्चर सो गुरु पूर्णिमा इज अ फेस्टिवल ऑफ द कल्चर टू प्रोटेक्ट द कल्चर इज कॉल्ड अ लिविंग कल्चर सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म सनातन धर्म इज ए लिविंग धर्म वॉट डज इट मीन्स वॉट मीन्स द लिविंग धर्म वन मदर गिव्स ए बर्थ टू ए चाइल्ड इट इज द धर्म ऑफ द मदर टू गिव ए बर्थ टू द चाइल्ड इज हर धर्म वो सनातन धर्म है ए वन ट्री गिव्स यू फ्रूट इट इज द धर्म ऑफ द फ्रूट ट्री टू गिव द फ्रूट एक मां बच्चे को जन्म देती है बच्ची को जन्म देती है वो उनका धर्म जो है वो सनातन धर्म है और इस युग के अंदर इस आधुनिक युग में गुरु के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता है कौन सा गुरु थारा मास्टर स्कूल में स्कूल के मास्टर आपके गुरु है इसलिए और सभी सिस्टम विल स्टॉप ब्लॉक बट द सनातन धर्म गुरु एंड डिसाइपल विल एवर एंड एवर विल लास्ट दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इटर्नल रिलीजन ऑफ सनातन द रिलेशन ऑफ द मदर चाइल्ड हस्बैंड वाइफ नेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा Therefore, the Guru Purnima has a great meanings than other any festivals. हम मनाते हैं भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी वो एक की जन्माष्टमी मन रही है लेकिन गुरु पूर्णिमा जो है अरबों खरबों महर्षि ऋषि मुनियों की और आने वाले संतों की वो बनती रहेगी वो ही इसीलिए That is the greatest festival. That's called living festival. Sorry. Guru Purnima is living festival. Jinda. Aur sab sampradaya chali jayegi. Lekin ye sanatan sanskriti kabhi nahi mitegi. Kyunki ye shishya aur guru ka nata hai. आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद आप आए यू कैम ऑल वेलकम नाउ इज द टाइम फॉर प्रसाद देन आफ्टर विल बी भजन एंड भजन के बाद में आनंद और आनंद के बाद में जागृत तो जागृत सुसुप्त और स्वप्न तीनों ही एक ही पंडाल के नीचे दर्शन होगा कोई तो करेगा ऐसा दूसरा कहेगा हाँ है तो खाना पीना ने सोना और गाना सब यही पे होना के बाबू जी कमरों के कमरा तो गणे जा हुई जा कमरा की कोई कमी नहीं है हमें तो कमरा खूब है पर माँ कोई नाग देवता बैठा वेला तो आ बारिश में खेत पानी भरियोड़ो हैंग है जो ध्यान राख जो भाई सरप अरप आ जाता है इसलिए इधर उधर जाते हो और दूसरे ये
बार बार हमेशा कहते हैं कि लोग चले जाते हैं लघु शंका करने के लिए, पेशाब करने के लिए इधर उधर, ये पानी हमारे तालाब में जाता है, पानी पीने को जाता है, बाथरूम बने हुए हैं उधर ही जाना। अब इस बार पुलिस वाले कह रहे हैं कि अगर आप को बाहर इधर उधर निपटते देखते हुआ तो पुलिस वाला फोटो लेगा। कहला कोई को नहीं, पुलिस वालों को मैंने ऐसा फोटो दे रखा, कैमरा दे रखा है, दूर से वो देख करके क्लिक करेंगे और कहेंगे बाप जी ओ अटे बैठो तो। इसलिए हमें उसी जगह जाना है जहां सुविधा दी हुई है, भजन होंगे रात्रि भर, आप भजन गाना, सुबह प्रोग्राम होगा 8 बजे, 8:30 बजे गुरु पूजा होगी गादी की, और उसके बाद में यहां सभी सज्जन आएंगे दर्शन करेंगे तो कार्यक्रम चलता रहेगा। अब भोजन होगा तो आप सभी प्रसाद पाए, और आफ्टर वन आवर ईटिंग इट विल बी अगेन द सत्संग। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राउंड द वर्ल्ड। इफ यू वॉन्ट टू लिसन द भजन्स then it will be webcast and bhajans whenever you like. You can put on your television and you can see or hear the bhajan.

श्री नारायण भगवान की जय। आज की आनंद की जय। भक्त निमिया राय जी की जय।

0: ने की जय। श्रीदेव पुरी जी महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर श्री स्वामी माहेश्वरानंद जी योगिराज की जय। श्री अलकपुरी जी सिद्धपीठ परंपरा की जय हो। माता की जय।
1: Om Sri Alakpurisha Mahadeva.
0: Ki jai.
1: Sri Sri Deveshwar Mahadeva.
0: Ki jai.
1: Om Bole Sri Deep Narayan Bhagavane.
0: Ki jai.
1: Sri Madhavananda Holy Guruji Sri Sata Gurudeva.
0: Ki jai.
1: Vishwa Guruji Paramahansa Maheshwarananda Yogiraj.
0: Ki jai.

0: हमारा लीडर क्या करेगा?
1: अर्जुन
0: जी बाप जी कब आएंगे?
2: लक्ष्मी
0: बाप जी पास जब बाप जी जाते हैं कि मैं जाता हूँ तो
1: ¿Qué es lo que hay?

पुष्प है जिसको महादेव रे अर्पण कर दो, साबरा हाथ में जी का पुष्प अंजलि में वे महादेव रे अर्पण कर दो और आगू आगे ट्रांसफर कर दीजिए पुष्प नहीं तो। आप दीपक आप चलू करो लाखंड दीपक है और पूरा अभिषेक तक लगेला तैयार करना है, आप बटर साइड में रख दो ठीक है। आप आगे हाथ में दे दो अगरबत्ती दे दो, आपने माची दे दो, धूप कन्ने रख दो, आधा हाथ दिया लाग गया एडवांस सही है सर क्यों दो गिल्ली वेगी में ऊपर रख दी हूँ, आप सामान लाया जिनमें दो गिल्ली वेगी माचिस। हाँ अगरबत्ती है सर, अगरबत्ती है आलो धूप लगाओ एक गिल्ली है गिल्ली है। चलू करी ओम पा चलू करी ओम मग्नेर ज्योति ज्योति रग्ने स्वा, हाथ जोड़ो भाई साहब ओम मग्नेर ज्योति ज्योति रग्ने, दीपक रो ध्यान करो कर्म साक्षी आप कर्म कर रही हो इन साक्षी है दीपक देवता। ओम मग्नेर ज्योति ज्योति रग्ने स्वाहा, सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ओम मग्नेर वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, भो दीप देव रूपस्तम।

गजाननजीरो रिद्धि सिद्धि से ध्यान करना। ओम समगस्य एकदंतश्च कपिलो गजगर्णक लंबोदरस्य विघटो विघ्ननाथ विनायक धूम्रकेतु दुर्गणाध्यक्ष बालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि अपडे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा संग्रामे संकटे सेवा विघ्न तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं श्रीवर्ण चतुर्भुजं सद्नावदनं ध्याये सर्व विघ्नोपशान्तये अभिप्सिद्ध्यार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरै सर्व विघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। वृक्कतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्ध्यदा सर्वकार्येषु सर्वदा सदैव लग्नं सुदिनं सदैव स्तारा बलं चन्द्रबलं तदेव विद्या बलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीर्पदेते दिग्मं स्वरामे अनन्या सिन्धयन्तो मां येजनां परिपास्ते तेषां नित्याभियोक्तानां योगक्षेमं वाम्यं स्मृते शकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषस्थं व्रजे नित्यं व्रजामि शरणं वरिं सर्वेष्वारब्धकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिसन्तु नासिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन विनायकं गुरुं वानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये सर्वकार्यार्थसिद्धये विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। नमः शब्द उच्चारण करना आप लोगों ने, नमः शब्द बोलना आपने लारू सिर्फ, ठीक है। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, शची पुरंदराभ्याम नमः, माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो वेदेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतद् कर्म प्रदान देवताभ्यो श्रीमन् महागणाधिपते सांब सदा शिवाय नमो नमः। पुष्प जी को गजानन जी अर्पण कर दो। श्रीमन् महागणाधिपते नमः। गुरु गणपतिं ध्यायेत। अब आप पुष्पाद गुरुदेव ध्यान करना, ठीक है सा।

तो तीन बार बोलो सा जय जय जय। ओम विष्णुर विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा पर्वतमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रारार्धे शिष्यै द्वाराः कल्पैवैवस्मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रदं शरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावृतांकत ब्रह्मावृते गदेशे पुण्यप्रदेशे क्रोधी नामने संवत्सरे रविः दक्षिणायने उत्तरगोलीयमा मांगल्यप्रदे मासे पुण्यपवित्रमासे है भाद्रपदमासे सुबे है कृष्णे पक्षे तिथोऽद्य अष्टम्यायां तिथोऽद्य वासरान्वितायां अद्य चन्द्रवासरान्वितायां मह वृषभराशि स्थिते सूर्य एवं ग्रह गुण विशिष्टे निविष्टायां सुपुण्यस्थितौ अष्टम्यायां तिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम् वर्माहम् गुप्तोऽहम् आप आपरो नाम गोत्र गुरु जी रो पहला नाम गोत्र पचे है जी को आप आपरो सब रो नाम गोत्र बोल ले रहे होना क्यों गुरु जी पहला गुरु जी कई काल गुरुदेव कहो कि मारो भी नाम ले लीजिए आप सब पहले गुरुदेव रो नाम ले लो पछ आप लोगो रो पछ परिवार में जी का भी सदस्य बच्चा वगैरह स्त्री वगैरह हैंगो रो नाम ले ले बनो ताकि हैंगो ने इतना पुण्य फल प्राप्त हो जाए अभिषेक रो ठीक है स्त्री रो वगैरह बच्चा रो वगैरह हैंगो रो गोत्रस्य यजमानः सकल बोलो सा सकल शास्त्र स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम ऐश्वर्य अभी वृद्धि अर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्मी चीरकाल संरक्षण अर्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्धि अर्थम आपने मन में कामना भी ना मन में उच्चारण करा दो कि भाई मारी मन में आ कामना है व्यापार वृद्धि रही है शरीर आरोग्यता रही है और भी कोई तरह रही है कामना कही मारी कोई रुकियोड़ो काम मा दे पूर्ण कर दे डो सकल मन ईप्सित कामना संसिद्धि अर्थम हाँ बोल दिया सा अबे बोलो लोके सभायाम राजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम मम जन्म कुंडल्याम वर्ष कुंडल्याम मास कुंडल्याम दशायाम अंतरदशायाम प्रत्यंतर दशायाम नवग्रह पीड़ा दोष निवारण अर्थम मम ग्रहे शुक शांति प्राप्ति निमितम शकल पीड़ा दरिद्र भय कष्ट निवारण अर्थम व्यापार वृद्धि निमितम शिव पंचायत देवता प्रसन्ना सिद्धि अर्थम अस्मिन पाली नगर स्थान मध्ये जार्डन मध्ये देवेश्वर महादेव ऊपरी सांब सदा शिव देवता प्रसन्नार्थम सांब सदा शिव ऊपरी पयधारा जलधारा पंचामृत दुग्ध रुद्राभिषेक पूजन सहितेभ्य महम पाचो आप नाम गोत्र बोलना है बच्चर वगैरह हैंगो रो आप रे घर मुंह बीजे हैंगो रो नाम गोत्र बोलना जोड़ा जोड़ी नाम गोत्र बोलना महम करीशिये अट महादेव जी ने कहा बटे नीचे जल छोड़ना मौन ना अट नीचे बट मौन छोड़ना अट छोड़ना बस अट छोड़ना हाँ भाई सब जीना आराम हाँ भैया हाँ भाई आप लारे बैठ जाओ आराम हो हाँ एक बार और जल रखना आप लोगों से आगे बैठो फर्स्ट लैंड में तदंगत्वेन स्थापित देवताभ्यो जल रखना सा
तदंगत्वेन स्थापित देवताभ्यो गणपति पूजनम गजानंदी पूजा करोला, तदंगत्वेन पार्वती श्री माँ काली माँ लक्ष्मी माँ सुधी पार्वती पूजन सहितेभ्य स्वामी कार्तिक देवता पूजन सहितेभ्य नंदीश्वर नंदीश्वर नंदीश्वर पूजन सहितेभ्य साम सदाशिव उपरी पयधारा जलधारा दुग्ध रुद्राभिषेक कर्म महम पाचा आप नाम गोत्र बोलने वटे जल छोड़ना जेट पहला छोड़ियो महम करीशे जल छोड़ दो वटे आगू आ गया ट्रांसफर कर दो थोड़ी थोड़ी डबा हाथ में ले लेनी सर सुओ लेफ्ट रमोन है आगू आगे ट्रांसफर कर दीजिए कोतली डबा हाथ में लेवनी जीवन हाथ ऊपर ढक दे देवण यू डबा हाथ में ले जीवन हाथ ढक दे देवण और दस दिशा रक्षा रास्ते है बने दस दिशा रक्षा रास्ते हो पहला कुदरी रक्षा बचा पूजा रो कार्य हाँ आप ले लो बाकी यहाँ देवनी जरूरत आप ले लो बाकी ये तो वैसे भी डोरो बांध ने बैठी जरूर क्यों तो बैठा ना पहंगो ना कटे अच्छा बैठा ला रहे हाँ ऊपर रख दे दिया हैं ओम रक्षोवाणम वलगनम वैष्णवी मिदमांतम वलग मुक्तिरामी यम मे समानो यम समानो निजघाने कृत्यांगिरामी ओम मप सर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संसिता ये भूता विघ्नकर्तार तेना संतोपक सर्वेशाम विरोधेना पूजा कर्म समारभेत पूर्वे रक्ष थोड़ा सी लेने पूर्व दिशा रमान देखो चारी दिशाओं में फेंकना है पूर्वे रक्षत गोविंदम आग्नेयाम गुरुध्वज अटिन आग्नेयाम गुरुध्वज नारसिंहस्तु नैऋत्ये वाय छोड़ो वायव्या मधुसूदना अटिन उधरो श्रीधरो रक्षे देवम दस दिशो रक्षे वासुदेव थोड़ा आकाश कोनी एवं दस दिशो रक्षे थोड़ा जमीन मत है वासुदेव जनार्द जीवन आत्मा ले ना प्रमाद हाथवार गुमान बारे नोक दो राइट हैंड में ले लो सब जीवन आत्मा ले प्रा हाँ लेट में ले लीजिए छाप दे दू छाप में ले लो बोले या कटोरे ले लो हाँ इनमें छोड़ दो सब अबे आपकी कटोरी आ रही है ठीक है आप इन्हें छोड़ता रही जो पचास बारह नौका दीजिए अपने एक साइड में

और एक जना आउट ना कोई बारह नॉक दीजिए, ठीक है भाई कोई भी खोल दीजो भैया तो पहला चिता दियो और मोजा जी का बैर जुड़ा है वे खोलने पच्चे बैठो रामू चमड़ा रो बेल्ट है चमड़ा रमा ने बटवो क्यों पच गए महाराज आपने भूला नहीं और बस पाचा हाथ धोलो साबरा लोटो नहीं आपका ना हाथ धोलो पुनः हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धोने जल छोड़ दो नीचे हस्तो प्रक्षाल्य हाथ धोलो हाँ पुष्प हाथ में राखो पंखुड़ी और गजानन जी महाराज और ध्यान करो गजानन जी की पूजा प्रारंभ भी रही है हाँ हाँ लो सर माता गजानन जी सब और पुष्प आ जाए जरवन कह दीजो मैं ध्यान बोलू गजानन जी रो ध्यान करना रिद्धि सिद्धि से ठीक है ओम गणानंद वाह गणपति गम जीमनाथ में पुष्प राखना वासुदेव डब्बा में नहीं ओम गणानंदवा गणपति गम ममामहे प्रियानंदवा प्रियपति गम ममामहे निधि नंदवा निधिपति गम ममामहे वसो ममाहम जानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम्म ओम नमो गणेभ्यो गणपति विश्वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपति विश्वो नमो नमो गृहसेभ्यो गृहस्पति विश्वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो

श्रीमद महागणपला जल चढ़ाओ चार बार, पौंद्र पत्तो यदि पौंद्र पत्तो चार बार जल चढ़ाओ आगे ट्रांसफर कर दो आप लोग जल जल ले लीजिए और लोटा में। ओम शुद्ध बालो सर्व शुद्ध बालो मणि सब जना ध्यान कर ला हाथ जोड़ने भगवान ने मैं नौन करा रही हूँ मारा हाथों एडो को मन करना ध्यान करना। ओम शुद्ध बालो सर्व शुद्ध बालो मणि बाल सदास्विना सुविधा सुविधाक्षौरुणस्थ रुद्राय पशुपतये कर्णायामावलिप्ता रौद्रा नमो रूपा पार्जन्या श्रीमद्माकणाधिपते नमः शुद्ध उदकस्थानं समर्पयामि पाद्युदपाद्युमेतावानस्य महिमातो जायांश्च पूरुकापादोऽस्य विश्वा भूतानित्रपादस्यामृतं दिवि पाद्युदपाद्यं समर्पयामि नमोऽं त्रिपादूर्ध्वोदयित पूरुकापादौ सेयाभूत्पुत श्रीमन्माकणाधिपते नमः हस्त्योदम् अर्घ्यं समर्पयामि नमः ओं ततो विराड जायत विराजोदि पूरुकाबेडो ध्यान कर्णो गजानजिरेजको मुख्रमान जल पिलार्यौ श्रीमन्माकणाधिपते नमः मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि नमः सबंगरो ध्यान कर्ण पाश सबंगरमा जल चढ़ावणो पौंद्र बताऊ ओम शुद्ध जय तीर्थान तीर्थ जल रो ध्यान करना चढ़ावण भाई गंगा जल लाजू भी नौन करा रही हूँ। ओम जय तीर्थानि बचरंती स्रकास्तानि खंगिनाते खागुं सस्त्रयोजने वदनवानि तन्मसे श्रीमन्मांगणाधिपते नमः तीर्थोदक स्नानं समर्पयामि तीर्थोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानम् आचमनीयं जलं समर्पयामि आचमनीयं जलान्ते पंचामृत स्नानम् पंचामृत लिंगो एक वटकी दे दो मने ओम पंच नदी सरस्वती मभियांदी स्रोत सरस्वती तु पंच धासो देशे भवत्सरित श्रीमन्माकणाधिपते नमः एक तंत्रेण पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते श्रीमन्माकणाधिपते नमः ततो संपूजयेत। अब गजानन जी रह जी कुकुरी चंदन की टिकी दे दे पंचामृत धीरे धीरे पहला गजानन जी अभिषेक करो ना क्योंकि गजानन जी करना है पार्वती जी बीजा तो खड़ा खड़ा अभिषेक वेला नहीं ना है गंधाक्षत पुष्प कर दो ना भी यार पर यार करना है क्या जर आप हाथ राख जो एक दूजा रागू आगे आप यार हाथ राख जो आगू आगे सब कड़ी जुड़ जाए जो है अट्टी नान बैठो जो अट्टी दे यार हाथ लगा दीजो भाई तू बाबू अट्टी ना जा हाथ लगा दे चलू करो सा टिक्की दे दीजिए आप पुष्प पंकुड़ी चढ़ा दीजिए आपने कटोरी में जोड़ा क्या पुष्प या आप आगे दे दीजिए साहब पुष्प नहीं बैठा आपने कटोरी में ले लो मैं दो कटोरी दी है गट्टी नहीं गट्टी नहीं हाँ पाचो।